ममा के कंच पकड़ मची के खाई हो ममा के खाई हो पा।

कहाँ जाला बेटी घरे का भाई हो भाई बेस बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू आरएम2 रेडियो मस्तिष्क 6 AM. छह बजे के संक्षिप्त समाचारों के साथ उपस्थित है स्टूडियो में अभी उदय. आपको नमस्कार.
1: नमस्कार मनीषमा, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. सुबह के 6 बजे की पहली फ्लैश न्यूज में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ. गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई को और सख्त करने का निर्णय लिया गया है. नए रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत 10 जून 2026 से गाड़ी चलाते समय या फोन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर चालकों के 5 से 10 पॉइंट्स काटे जाएंगे. फिलहाल इसके लिए केवल 3 से 6 पॉइंट्स ही काटे जाते हैं. संबंधित मंत्रालय ने पुलिस के साथ मिलकर इस बात का विश्लेषण किया कि ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने पर कुल कितने चालान काटे जाएंगे. 71 साल के मारी नुवेली लोरेंट और उनके होने वाले दामाद लिनली आजी को कल एक बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती के बाद वीकेंड अदालत में आरोपी बनाया गया. उत्तरी प्रांत के अजसु अफसरों ने कल सुबह बेजटोंबो में लिनली आजी के घर पर छापा मारा था. कुल मिलाकर 5 पार्सल जब्त किए गए जिनमें 500 ग्राम से अधिक सिंथेटिक ड्रग्स थी. जब्त की गई ड्रग्स की बाजार कीमत लगभग 7.7 मिलियन रुपए की बताई जा रही है. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सभी के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सुलभ भोजन के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. स्वास्थ्य के लिहाज से ये एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, खासकर ऐसे समय में जब बढ़ती महंगाई और खाद्य आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं. विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान में बातचीत की कोशिशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया. पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोला. उसके रेडर

0: सर्वेलेंस टावर को उड़ा दिया। अमेरिका ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। और अंत में मौसम का हाल।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: आम हालत, दक्षिण में पाए जाने वाले बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है, जबकि मास्कारेंस की दक्षिण दिशा से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के उभरने की वजह से ठंड महसूस की जाएगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह दक्षिण, पूर्व और सेंट्रल प्लेटो पर हल्की सी बारिश होगी, जबकि दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान ऊंचे इलाके पर रह रहकर थोड़ी सी बरसात हो सकेगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर पश्चिमी तथा दक्षिणी लगूनों के उस पार। अगर तापमान के बारे में बात करें तो सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्तीय इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:40 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:37 पर।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

सदकल्लाह अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अभी आपने कुरान पाक की चंद आयात मुबारका की तिलावत समाअत की। परवरदिगार आलम से दुआ है कि वह हमें इन आयतों के सुनने का अजर व सवाब अता करे और हमें सही तरीके से कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। पेश खिदमत है हम्द, आइए समाअत करते हैं।

0: कसं काय म्हणले
1: तुझा पॅन खरा स्वॅग तुझा लय जबरा.

0: Gen Radio and Gen Radio.
1: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Avo, amari saathe. It's always a better choice. Your songs on your radio, my one and only station.
0: RM3 Manoranjan Radio.
2: नमस्कार श्रोताओं, हूँ छु अमिता ने तमारा माटे में लईने आवी पहोंच्या छे गुजराती कार्यक्रम आवो अमारी साथे रेडियो मनोरंजन पर प्रसारित थतो। तमे सौ कई मजा में हसो एवी ज आशानी साथे चालू शुरू करिए आजनो गुजराती कार्यक्रम मधुर रंगीन गीतों नी साथे। अने तमे ज्यांय क्यांय थी जोड़ा होय ते बधाने अमारा तरफ थी प्रेम भरिया जय श्री कृष्ण स्वीकार करो। श्रोताओं, कहेवाय छे ने के भाई भगवान पर विश्वास करवानुं शीखवुं होय ने तो भाई आपणे पक्षीओ पासेथी शीखवुं, केम के ज्यारे ते सांजे माळामां पाछा आवे छे ने त्यारे तेमनी चांचमां काल माटे कोई पण दाणो होतो नथी। एटले कंईक शीखवुं होय तो आपणे पक्षीओ पासेथी शीखवुं जोईए कि ज्यारे सांजे फरीथी एमना पोताना माळामां आवे छे त्यारे एमना चांचमां कशो दाणो नथी होतो। सुंદર મજાનું એક ગીત લઈ લઈએ અનુરાધા પૌડવાલ અવાજમાં લેવામાં।

चलिए श्रोताओ, 10:45 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम है भक्ति में शक्ति। आज है रविवार और रविवार का दिन हम सूर्यदेव जी को पूछते हैं, तो सूर्यदेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, हमारी यही कामना है। तो चलिए, आज रविवार है और जून महीने की 7वीं तारीख, आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करते हैं, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम भगवान गणेश जी का नाम लेकर करेंगे। कहते हैं, जहाँ पर आस्था हो, विश्वास हो, साथ में समर्पण, वहीं पर भक्ति जो है आरंभ होता है। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

0: श्रोताओ
1: भक्ति में शक्ति कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा आज का दिन जो है हम भगवान सूर्य को पूजते हैं। सूर्यदेव केवल एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन के आधार है। उनकी किरणों से ही पृथ्वी पर प्रकाश, ऊर्जा और जीवन संभव है। हिंदू धर्म में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है क्योंकि वे हर दिन अपने तेज से संसार को अलौकित करते हैं। वे सत्य, शक्ति, अनुशासन और कर्म के प्रतीक माने जाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान जो है भगवान सूर्य पर आधारित आपकी सेवा में हम प्रसारित करेंगे।

चलिए श्रोताओ, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। 11:06 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव भगवान के बारे में। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर समस्त संसार को प्रकाश प्रदान करते हैं, और हर इस दिन जो है सूर्य को जल हम अर्पित करते हैं, साथ में ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी करते हैं ताकि हमें शुभ फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। अगला भक्तिगान जो है आप समस्त श्रोतागण के लिए जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं।

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम का समापन जो है हम कर रहे हैं। वैसे आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ हो। और कहते हैं ना कि भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से हमारी ज़िंदगी में प्रकाश ही प्रकाश जो है आता है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। कुछ ही घड़ी में 11:30 बजने वाले हैं और अगले कार्यक्रम जो है आप चीनी भाषा में सुन सकेंगे। तो हमारी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

听完听心愿这份暖意常伴左右，接下来这首四季一同感受岁月里的温暖。

走过四季，不妨让思绪奔赴一片浪漫天地。接下来，一起来听《爱琴海》。

浪漫过后，换一份悠然雅致，经典乐曲，月光下的凤尾竹，让我们闭上眼，静静聆听。

一曲明月悠然结束，接下来这首牵手道尽相伴的温暖，请欣赏。

为牵手，所以懂得掌心之中那份绵长暖意，愿这份温柔萦绕耳畔。歌曲《手心里的温柔》送给大家。

0: सुनते हैं समाचार अभी के साथ। आपको नमस्कार अभी।
1: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। 12 बजे के संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। बढ़ते साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को देखते हुए मॉरिशस अपने कानूनों को और मजबूत कर रहा है। डिजिटल लेन देन को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने, डिजिटल सेवाओं में लोगों का भरोसा बढ़ाने और कानून को नई तकनीकों के हिसाब से ढालने के लिए हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एक्ट में बदलाव लाया गया है। ये सुधार देश में डिजिटल बदलाव को मजबूत करने की सरकार की रणनीति का एक हिस्सा है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब मॉरिशस साइबर सिक्योरिटी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार मॉरिशस साइबर सुरक्षा के मामले में पूरे अफ्रीका में पहले स्थान पर है और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देशों में से है। बजट 2026-2027

0: 2027 में खाद्य सुरक्षा एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के महानिदेशक नवीन दियापाल सिंह ने का मानना है कि मॉरिशस को खाने पीने की चीजों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और इसके लिए अपने प्रयासों को तेज करना होगा। उनके अनुसार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण तरीकों की पहचान की जा चुकी है, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर करना, किसानों के लिए मजदूरों की उपलब्धता आसान बनाना, बीजों तथा खादों पर सब्सिडी देना और लैंड बैंक प्रोजेक्ट के जरिए खेती के लिए और ज्यादा जमीन उपलब्ध कराना है। 71 साल के मागी नोएली लोरों और उनके होने वाले दामाद लिनले आजी को कल एक बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती के बाद वीकेंड अदालत में आरोपी ठहराया गया है। उत्तरी प्रांत के आजसू अफसरों ने कल सुबह बिजटोंबो में लिनले आजी के घर पर छापा मारा था। कुल मिलाकर 5 पार्सल जब्त किए गए जिनमें 500 ग्राम से अधिक सिंथेटिक ड्रग्स थे, जिसकी लागत 7.7 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। इस बीच अमेरिकी सुरक्षा विभाग के भीतर ये चिंता बढ़ गई है और इजराइल अमेरिकी अधिकारियों और ट्रंप सरकार की अंदरूनी जानकारी जुटाने के लिए जासूसी की कोशिश कर रहा है। खबरों के अनुसार दो मौजूदा और एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि पेंटागन के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने हाल ही में इसराइल से जुड़े काउंटर इंटेलिजेंस खतरे का स्तर बढ़ाकर क्रिटिकल कर दिया है। ये एजेंसी का सबसे गंभीर अलर्ट माना जाता है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 72 साल के 72 years old के श्री सुभाष चंद्र चौधरी जिन्हें सब लोग दागम के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 64 रोटे नंबर एक लासूस कैथोबोन में 60 साल के 60 years old के श्री डोमेन दास पुचिगाडू जिन्हें सब लोग गानीसेन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती रूबीना पुचिगाडू के घर नंबर 64 रोटे नंबर 1 लासूस कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

Bare 5-10 minutë, orin free radio më në rëngjën për... Namaskar pranam, good afternoon. Ada, ba kaise hain aap log mere dost? रविवार की सुनहरी दोपहर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. वार्म वेलकम टू एवरीवन. और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन मुस्कुराहटों, परिवार और मधुर यादों के साथ बीत रहा होगा. लंच टाइम है. बोन अपेटी आप सभी को शुभाहार. और आप लोग अपना जो लंच है ना ले रहे हैं और गाने सुन रहे हैं तो वाह, सुनने पे सुहागा. अगर आप लोग इस रविवार को और एंजॉय करना चाहेंगे तो बस जुड़ जाइए हमसे यहीं पर एमबीसी रेडियो और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर. देवीना है आपके संग 3 बजे तक. वैसे दोस्तों, रविवार का दिन केवल छुट्टी का दिन नहीं होता बल्कि यह उन यादों को भी साथ लेकर आता है जो हमारे कभी हमारे जीवन का खूबसूरत हिस्सा थी. आज का हमारा जो सोच है ना, हम इस पर

सोचेंगे आप अगर आ हमसे शेयर करना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ है या कौन से लोग हैं जिन्हें आप रविवार को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि रविवार का दिन जो होता है ना, हम अपनों को मिस करते हैं, हम अपने जीवन पर विचार करते हैं और सोचते हैं क्या क्या हमने किया, क्या करना बाकी है। और कभी कभी मैं ऐसा महसूस करती थी पहले, जब यहाँ पर काम नहीं करती थी रविवार को, तो जब संडे आफ्टरनून होता था ना, तो मैं बैठ कर सोचती थी जब घर पर होती थी कि ओ नॉस्टैल्जिक सा जो फीलिंग आता था कि उसको मिस किया, ओ अकेलेपन का एहसास होता है। बस संडे आफ्टरनून होता ही ऐसा है नॉस्टैल्जिक, तो नॉस्टैल्जिया में डूब जाएंगे खूबसूरत गानों के साथ सुहाना सफ़र प्रोग्राम के दौरान। वैसे क्या आपको अपने बचपन के रविवार याद आते हैं? क्या आप अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन के साथ बिताए पल याद करते हैं? क्या आपको परिवार के साथ दोपहर का खाना, दोस्तों के साथ खेलना, दोस्तों को फ़ोन करना या पुराने ज़माने की रेडियो की महफिलें याद आती हैं? आप रेडियो बजाते थे, सॉन्ग्स बजाते थे और सभी परिवार एक साथ सुनते थे। बस अपनी दिल की बात हमें ज़रूर भेजिए। अगर आप सभी जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं तो वेलकम आप सभी का। और आपको तो नंबर पता ही है, यहाँ पर तो फ़ोन बजना शुरू हो चुका है 4028070 पर 4 साथ में मैसेजेस के लिए 5250 6200। तो बस ये गाना आप सबों के नाम, फिल्म है धर्मात्मा, 1970 की फिल्म है, मुकेश साहब साथ में कंचन।

0: सुहाना सफर।
1: बारह बजकर 28 मिनट हुए हैं। आज संडे 7 जून 2026 और वैसे हम देख रहे हैं वो फ़ोन की घंटी बजी रही है मगर हम नहीं ले पा रहे हैं। अगर हम मिस कर गए आपके फ़ोन को तो आप फिर से हमें फ़ोन कीजिएगा। सो बस यहाँ पर आप जुड़े हुए हैं सुहाना सफ़र प्रोग्राम के साथ और हम कह रहे थे कुछ पुरानी यादों की के जो किस्से हैं आप हमें बता सकते हैं। वैसे समय बदल जाता है लेकिन यादों की खुशबू कभी पुराने नहीं होते। कई जो हमारे जो लिसनर्स हैं कहते हैं कि उन्हें रविवार को माँ के हाथ का बना खाना याद आता है। हाँ जी, कुछ को पिता के साथ बिताया गया समय, कुछ को अपने गांव की गलियां और कुछ को वे दोस्त जो अब दूर हो चुके हैं, शादी करके वे दूर जा चुके हैं या फिर गांव बदल चुके हैं या दूर देश में जाकर वे बस चुके हैं, उनकी यादें आती हैं। और रविवार अक्सर हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया और उन सबको हमारा सलाम है। वैसे श्यामा रघुनंदन जी ने हमें फ़ोन किया है गाँव गुब से, हमेशा की तरह प्यारी प्यारी बातें करती हैं श्यामा जी। तो उनको परिवार की याद आती है और वे कहती हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाया था, उनको खिलाया था और कुछ जो उनके भाई बहन हैं आज अभी यहीं पर हैं मगर कुछ हैं जो दुनिया छोड़ चुके हैं, उनकी याद आती है। और पुराने ज़माने में उनको हमेशा से रेडियो सुनना पसंद था और रेडियो सुनते सुनते जो गाने थे वो लिखती थी और उनके पास कॉपी बुक्स थे उन गानों का। और ये यादें जो हैं उसी उनकी जो उनसे जुड़ी यादें हैं उनके साथ जीती हैं और रेडियो उनका परम मित्र है। तो इन यादों के सहारे भी हमेशा आज भी 80 के ऊपर हो चुकी हैं। तो बॉन कोगाज आपको श्यामा जी और हमेशा रेडियो आपका साथी है। तो बस हमारे साथ ऐसे ही अपनी जो छोटी प्यारी प्यारी से यादें हैं आप हमेशा हमारे साथ बांधिए, हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें बांधिए और आपका साथ है तो हमें और क्या चाहिए, आपका आशीर्वाद मिले। तो बस आपको सुनना है रफ़ी साहब के साथ लता जी की आवाज़ है, वो है फिल्म सरंगा प्यार के पिया कैसे मिलूं तुमसे। बस ये गाना आपके लिए, इसको एंजॉय कीजिए। और आप कह रही हैं श्यामा जी कि आप लंच बना रही हैं तो बस बना पीछे गर्मा गर्म जो है आप खाइए और इस गाने को एंजॉय कीजिए।

वैसे इस गाने में नाम जोड़ेंगे भैया जयप्रकाश का, भाभी है नम्रता, निफ्यूज है केशव युधिश, साथ में उनकी जो प्यारी सहेलियां हैं नंदिनी ओकलू, हेलो जी, वीना रामफोल और विश्वानी दुखी।

जहाँ अगर इजाजत हो तो हम आपके घर आए। हाँ नहीं आएंगे पर्सनली, मगर हमारी आवाज़ आप तक आ रही है। थैंक यू सो मच, आप हमारा साथ दे रहे हैं यहाँ पर और एम फ्री रेडियो मनोरंजन के साथ। दीविना है आपके संग 3 बजे तक, वैसे 12 बजे से 2 बजे तक आपके प्यारे प्यारे जो ओल्डीज़ हैं, यादों की बारात हम लेकर आए हैं, और 2 बजे के बाद स्वीट स्वीट 90s के गाने आपके लिए हम पेश करने वाले हैं। 12:42 हुए हैं, सो कितने से लोग हैं जो अभी खाना खा रहे हैं, कुछ काम काज में लगे हुए हैं। वैसे भी हम कह रहे थे ना कि आज रविवार को हमेशा संडे को आपको कौन सी याद सताती है, कौन सा टाइम आप मिस करते हैं, किसको मिस करते हैं। वैसे किसी ने बहुत सुंदर कहा है, यादें वो खजाना है जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। ये तो रियल है। और रविवार की दोपहर में जब काम काज थोड़ा थम जाता है, तब मन अक्सर अतीत की गलियों में घूमने निकल पड़ता है हमारे हमको साथ लेकर, और कभी कभी रोना आता है, कभी कभी हंसना आता है, और बस यादों की दुनिया में हम खो जाते हैं। और याद आता है वह समय जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर लंच लेता था, जब मोबाइल नहीं था तब क्या था, रिश्तों में अपनापन भरपूर था। और आप किसे मिस करते हैं, आप अपना संदेश भेज सकते हैं, मैसेजेस हैं वो 5250-6200-250-6200। साथ में कितने से लोग हमसे बातें कर रहे हैं ऑन 402-8070-402-8070 पर। बस अगला गाना जो है हम सूरीनाम की ओर बढ़ते हैं, वहाँ पर है साउथ में जयश्री जी। तो जयश्री जी हेलो जी, वे कह रही हैं वे अपनी स्वीट स्वीट मम्मी के साथ रेडियो सुन रही है और मम्मी की देखभाल कर रही है, बों कुराज। और यही भी तो एक पूजा है ना, जब हम अपने परिवार जो जब कोई बीमार है उनकी देखभाल करते हैं। और आई एम श्योर, मुझे पता है कि जब कोई बीमार होता है घर में, हमें उनकी देखभाल करना होता है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। ये बहुत कठिन होता है क्योंकि वे मूडी होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है बहुत सी चीज़ें, वे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। सो जितने लोग बूढ़े जो हमारे जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं, बीमारों की देखभाल कर रहे हैं, आप सबों को भेजते हैं ढेर ढेर सारा प्यार फ्रॉम आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन टीम। और एक्चुअली जो जयश्री जी हैं कह रही हैं कि कल एक्चुअली जो मंडे हैं 8th of June को उनकी माता जी का बर्थडे है, तो इन एडवांस माता जी अगर आप सुन रही हैं हमें, तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ हैं हमारी ओर से, पूरी MBC टीम की ओर से, पूरे जो लिसनर्स हैं यहाँ पर आप सभी को भेज रहे हैं ढेर सारा प्यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जयश्री जी अपनी मम्मी के साथ बर्थडे मनाएगी, अपने जो पता नहीं क्या क्या करेगी, उनके साथ डे स्पेंड करेगी, कुछ अच्छा खाना बनाएगी। सो आपका आशीर्वाद रहे हम सब पर माता जी। सो ये जो गाना है आपके लिए, और आप स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे और अपनों के साथ रहे, आपको अपनों का प्यार मिले। तो परिवार की ओर से, सभी की ओर से हैप्पी बर्थडे। और ये गाना आपके लिए मांगा है जयश्री जी ने आशा जी की आवाज़ में, फिल्म है काजल।

देवयानी जी रिश्मा फ्लक से ये आपके लिए था देवयानी जी, साथ में देवधारी और चिदी फैमिली के लिए और साथ में प्यारी जो नातिन है लिविया, और देवयानी जी श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहती थी सुमन कल्याणपुर जी को जो जुन्या छोड़ चली। हालांकि उन्होंने बहुत कम गाने गाए मगर उनकी जो आवाज़ है वो लता जी से मिलता जुलता था, सो बस बहुत से लोग चक्कर में पड़ जाते थे कि ये आवाज़ जो है सुमन कल्याणपुर की थी या फिर उन लता जी की। बस वे जहाँ भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मुकेश साहब साथ में सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में ये था बहुत ही प्यारा सा गाना। यहाँ पर है सुहाना सफ़र प्रोग्राम आप सबों के लिए। अब वाकुआ के नंदलाल जी, आपने जो गाना मांगा हमने ढूंढ लिया, फिल्म है छोटी बहन, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना आपको सुनना था। और नंदलाल जी कहते हैं कि उनको ऐसे गाने अच्छा लगता है जो बार बार हमें सुनने को नहीं मिलता, सो बस आपने जो चुना है गाना आपके लिए, सभी सुनने वालों के लिए जो ऐसे गाने पसंद करते हैं रफ़ी साहब की प्यारी सी आवाज़ में। मैं रिक्शा वाला और मैं हूँ देवीना आप सबों के संग।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति के साथ। आपको नमस्कार अदिति।
1: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। 2026 के लिए गन्ने की कटनी कुछ दिनों में शुरू होगी। इससे पूर्व हर साल की तरह कौंजाबल में अम्माटू के कोविल में पारंपरिक प्रार्थनाएं की जाती हैं। आज की विशेष पूजा में कई महानुभाव उपस्थित हुए। कटनी का ये नया सीजन इस साल 22 जून से आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। फसल अच्छी रहे और कटनी उचित तरीके से बीते इसके लिए अम्माटू के का आशीर्वाद लेना मॉरिशस में एक परंपरा सी है। इस साल के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार गन्ने का उत्पादन लगभग 2,25,000 टन तक पहुंचने की संभावना है, जबकि पिछले साल पैदावार 2,20,000 टन के आसपास थी। गन्ने की पिराई का काम 22 जून से अल्थेओ और तेगा कारखानों से शुरू हो रही है, जबकि ओमनीकेन में उत्पादन 14 जुलाई से शुरू होगा। सैलरी घोटाले के मामले में डीपीपी ने फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को बेथॉन लार्जेस के खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को इंटरमीडिएट अदालत के समक्ष अपील कर

0: करने के बाद एफसीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील त्रिशूल नागानिधि इस मामले में बैथौला शेष के खिलाफ गलत तरीके से प्रभाव डालने के कम 67 आधिकारिक आरोप दर्ज हैं। कौंदमास में कल शाम एक सड़क दुर्घटना पेश आई। 44 वर्षीय एक चालक द्वारा चलाई जा रही एक बस अनियंत्रित होकर एक दूसरी गाड़ी, एक गैराज की छत, एक बस स्टॉप और कंक्रीट की एक दीवार से जा टकराई। बस लगभग 100 मीटर चलने के बाद रुकी। चालक को हल्की चोटें आई हैं और उसे अस्पताल ले जाया गया। उस पर किया गया अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव रहा, लेकिन ये जानने के लिए ब्लड टेस्ट किया गया कि उसने किसी मादक द्रव्य का सेवन किया हुआ था। परिवहन मंत्रालय और पुलिस के स्तर पर जांच शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, मध्य पूर्व में तनाव जारी है। अमेरिकी ताकतों ने 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं जो हॉर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को रोकने के प्रयास में थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी कि अगर ईरान ने हमले नहीं रोके तो युद्ध विराम रद्द कर दिया जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। ऋषि दयानंद लेन मौला शो में, ऋषि दयानंद लेन मौला शो में 72 साल के 72 years old श्री सुभाष चंद चौधरी, श्री सुभाष चंद चौधरी जो धर्म नाम से जरा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे, इनके मकान ऋषि दयानंद लेन मौला शो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वो शौकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। जेबेयर रोड रोजबेल में, 65 साल की 65 श्रीमती माला वीरापेन, पैदाशी नाम कनाई जो माला नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, इनके बेटे श्री प्रीतम वीरापेन के मकान जेबेयर रोड रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मांगी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। नंबर 64 होते नंबर एक क्लास उसका थबोन में, 60 साल के 60 years old श्री धर्मेंदास पुटिकादू, जो गाने से नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे, इनकी पत्नी श्रीमती रूबीना पुटिकादू के मकान नंबर 64 गोते नंबर एक लासूस का तोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
3: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
6: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना
1: सफर। जो ऑलरेडी 13 यानी कि यहाँ पर है 1:10 और संडे का दिन है 7 June 2026। वैसे हम बात कर रहे थे ना, वंस अगेन वेलकम टू सुहाना सफर प्रोग्राम, देविना है आपके संग यहाँ पर। सो कुछ पुराने कुछ नए गाने और 2 बजे के बाद डायरेक्टली 90s के गाने हम सुनाने वाले हैं। अभी के लिए आप जो ओल्डीज जो कहते हैं ना, सदाबहार गाने हम आपके नाम कर रहे हैं। सुबह से जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे हम, रविवार को जब बैठे बैठे हम को किसकी यादें सताती हैं, हम क्या मिस करते हैं ज़िंदगी में। वैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ रिश्ते हैं, कुछ पल हैं हमारे दिल में हमेशा बसे रहते हैं, और आप लोग शेयर कर रहे हैं कुछ ऐसी बातें। और संडे को ना हमें यह अक्सर अवसर देता है कि हम थोड़ी देर रुक कर उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमारे जीवन में प्रेम, प्रेरणा और खुशियाँ भरी हो। जैसे बचपन के दोस्त, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, हमारे कजिन्स एक साथ खेलते थे, पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, घर के पीछे दौड़ते थे। और मुझे याद है ना, हम यहाँ हमारे यहाँ ना बालोंसवा बनाते थे, और बार बार वो जो झूला था ना वो टूटता था, हम गिरते थे, हंसी आती थी, मार भी पड़ती थी। बस ऐसी ही यादें हमेशा आती हैं, और रविवार को तो बेशक ऐसी यादें ही आती हैं, और हम उन दिनों को मिस करते हैं। अगर कोई अपना आज आपके पास है तो उसे एक फ़ोन कीजिए, उसे एक मैसेज भेजिए, उसे देखने जाइए, क्योंकि एक प्यारा सा संदेश भेजिए,

क्योंकि रिश्तों की असली खूबसूरती उन्हें निभाने में है, बस सिर्फ दिखाने में नहीं। तो अगर आपके पास अभी तक कोई है जो आपसे बात करता हो, जो आपको पुरानी यादों को की खुशियां उन्होंने दी हैं और आज भी दे रहे हैं, तो आप यू आर वेरी लकी मेरे दोस्त, आप बहुत खुश नसीब हैं। और वैसे हम भी बहुत खुश नसीब हैं कि आप लोग इतनी प्यारी प्यारी बातें हमसे कर रहे हैं फ़ोन पर और मैसेजेस पर। और एक बात बता दी है आपको कि कभी कभी कुछ ऐसे गाने होते हैं ना, आप मांग करते हैं, हमें अच्छा लगता है वो चलाना, मगर यहाँ पर जब सर्वर में देखते हैं तो वो गाने नहीं है, पता नहीं कैसे उन्होंने सेव किया या वो गाना ही नहीं है। सो अगर कोई गाना हम नहीं चला पाए तो सो सॉरी, अगली बार के लिए हम ज़रूर हम आईटी सेक्शन से कहेंगे उस गाने को ढूंढने के लिए और हम उस गाने को बेशक चलाएंगे आप लोगों के लिए। अब अभी के लिए ये जो गाना है आंखें मूवी का गाना, मिलती है जिंदगी में, एक साथ गुनगुनाए। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, हाँ जी, वैसे हम कह रहे थे ना कि सबको मोहब्बत नहीं मिलती, अगर आपके पास मोहब्बत है, दोस्ती है, सो बस उनको निभाइएगा, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बस अपने दिल से उस रिश्ते को निभाइए। तो ये गाना जाएगा खास तौर पर, इस गाने की मांग की है, हमेशा की तरह प्यारी प्यारी सी बातें करती हैं रिवे जगोंपो की माला जी। और ये गाना जाएगा कनील, कबीर, कनीष, केविन, किरण, सत्यम, शिव और सभी परिवार जो गिरधारी परिवार हैं। और वैसे माला जी कह रही हैं कामकाज में लगी हुई हैं, अभी लंच भी करेगी, सुबह ना पे चिशुबहार। माला जी ये गाना आपके लिए।

हाँ जी, इससे पहले मोनी और सोनी की कहानी से पहले आपने सुना बचपन के दिन जो है, और ये गाना वो स्पेशली ललिता जी के लिए था कालबास, और वे कह रही है रीजन आई रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग टू शो हाउ लाइफ हैज चेंज्ड सो फास्ट रियली, लाइक वी वर स्टिल यंग प्लेइंग विद आवर सिबलिंग्स इन द यार्ड बट लुक एट अस नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड इन अ सडन दैट आई कुडंट नोटिस एवरीवन लीव देयर पर्सनल लाइफ इट्स लाइक इट्स नॉट लाइक बिफोर आई रियली मिस दीज ओल्ड डेज. हाँ जी, आपने बिल्कुल कहा ललिता जी, वो ज़माना क्या ज़माना था, और वो इनोसेंस अब नहीं रहा, वो प्यार इतना प्यार अब नहीं रहा. सभी लोग कहीं ना कहीं हम सब लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी ही इतनी तेज़ गाड़ी से जा रहे हैं कि क्या कहें. हम किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे, बस अपनी जैसे रफ्तार से चले जा रहे हैं, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि कोई नहीं है हमारे साथ.

तो बस आप ज़रा संभलिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, और जो है आपके पास हमेशा कहते हैं ना, हम हमेशा जब आते हैं इस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करते हैं ज़िंदगी के बारे में, बचपन के बारे में, जवानी के बारे में, परिवार के बारे में. क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है, 3 घंटे आपके साथ रहना है हमें, तो बस क्यों ना हम अपने हाली दिल शेयर करें. बस सरिता जी, ये था गाना आपके लिए. अब फिर से आपको ले जाते हैं पुरानी राहों में. फिल्म है अनारी, लता जी की आवाज़ में, साथ में मुकेश साहब. और ये गाना जो है एक्चुअली इसकी मांग की है बाबू अनाटवा जी ने कैटोबोन से. हमेशा की तरह शॉप में है और घर जाकर लंच करने वाले हैं बाबू जी. आपको हम कहेंगे बोन अपीची. और उनको वो कह रहे हैं उनको अच्छे अच्छा लगता है पुराने गाने, और ऐसे ही हमेशा उन इन गानों से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं. और वे कह रहे हैं एक्चुअली मौसम कटोबोन में सुहाना है, तो हम जब आ रहे थे तो मौसम सुहाना ही था, कुछ कुछ बारिश भी हो रही थी. तो बस आज लगता है जैसे सर्दी थोड़ी थोड़ी आ ही रही है, मगर एकाएक जैसे गर्मी हो सी लगती है. क्या करें, ये मौसम ही है ऐसा. सो बाबू अनाटवा जी के परिवार के लिए साथ में है विदेश, भावना, पूजा और स्वीट स्वीट जो पत्नी है उषा, और उनकी सभी जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके लिए ये गाना.

गाना रफी साहब की आवाज में, ये गाना स्पेशली बुब्बा सिंह के हरीश जी के लिए, उनके किसी खास दोस्त के लिए। अब नोटरडाम से रेहाना जी कह रही हैं कि शी इज मिसिंग माला फाउडर, उनकी जो सहेली हैं माला फाउडर एक्चुअली बीमार थी, अब कुछ कुछ ठीक हो रही है मगर उनके पास नहीं है, वो अपने बच्चों के साथ हैं अभी के लिए। तो दुआ करते हैं कि माला जी स्वस्थ होकर रेहाना जी आप फिर से मिले उनके उनको। और साथ में सुरेखा के लिए ये गाना है, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। और रेहाना जी कह रही हैं उनको जना होशियारी नहीं आती, बस प्यार करना आता है दिल से। तो बस रेहाना जी ये गाना आपके लिए, मुकेश साहब की आवाज़ में, फिल्म है अनारी।

चालाकी से, बहुत लोग चालाक हैं आजकल, बस आप होशियार रहें, इतना भी अनारी भी मत बनिए। कभी कभी कैसे कहना है कि बस आप जो भी करें ज़िंदगी में सोच समझ कर करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भोले बन जाते हैं, अनारी बन जाते हैं, क्योंकि अगर सभी बातें हम दिल पर लगा लेंगे, दिल से जैसे दिल से लेंगे, तो बस हमें दुख होगा। तो बस कुछ अनारी बनना पड़ता है, कुछ होशियार बनना पड़ता है, यही तो दुनिया है मेरे दोस्त। और ऐसे में रुजील से साजिद जी ने फ़ोन किया, हमेशा की तरह बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं। और वे कह रहे हैं कि उनके पास कलेक्शन है, चाइल्डहुड कलेक्शन, उन पर लिखते हैं हमेशा की तरह। वे बस कुछ ऐसे जब गाने, जो गाना उन्होंने मांग की है, उनकी मांग की है गाने की, यादों की बारात फिल्म का गाना है, और वे कह रहे हैं ये जो गाना है उनको याद दिलाता है उनके पापा के, ब्लैक एंड वाइट टीवी पर ये गाना आता था। इसके बाद धीरे धीरे जो कलरफुल मूवीज़ आने लगे, मगर जो गाना था हमेशा उनको ब्लैक एंड वाइट ज़माने में ले जाता है। और ऐसे में ये गाना किशोरदा की आवाज़ में, साथ में आशा जी हैं, और हम बात कर रहे थे साजिद जी से, तो उन्होंने कहा कि उनको जो उनका चाइल्डहुड फ्रेंड है सरोवर, जो एक्चुअली कनाडा में है, तो हमेशा उनकी याद आती है और उनसे कभी कभी बात भी होती है। और वैसे साजिद भाई जो हैं लिखने के शौकीन हैं, जो भी हैं पेपर पर लिखते हैं, तो तब हमने उनसे शेयर किया कि हाँ, पहले के ज़माने में जब हमारे दिल में कुछ बात होती थी तो हम लिखते थे। इससे क्या होता था, हैंडराइटिंग भी अच्छी बनती थी, साथ में जो ग्रामेटिकल एरर्स थे हम उनको पहचान लेते थे, हम अच्छे दिखते थे, ऐसे भी अच्छे से दिखते थे। मगर आजकल जब बच्चे इस तरह से नहीं लिखते हैं तो क्या होता है ना, उनको लिखने का वो मौका नहीं मिलता, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बस SMS कोड में लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत गलतियाँ होती हैं। अगर बच्चे लोग आप हमें सुन रहे हैं ना, तो बस राइटिंग पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना ही आप पढ़ाई में तेज़ होंगे। तो बस हमारी यही छोटी सी कोशिश है कि आप सबों से छोटी छोटी बातें शेयर करें, छोटी छोटी जो एडवाइस हम बांट सके, आपसे भी हम एडवाइस देते हैं। और एक्चुअली पुराने ज़माने में डायरीज हुआ करते थे, क्या आपके पास डायरी था? तो हमें, मुझे याद है कि जब बचपन में हमें छोटी छोटी जो डायरी मिलती थी ना, तो उसमें जो भी आता था दिल में, गाना हमें अच्छा लग, आई एम सैड टुडे, आई एम हैप्पी टुडे, ये सब लिखते थे। और वो कैसे थे, हाइड करते थे, हम किसी को दिखाते नहीं थे, और अच्छा नहीं लगता था कि कोई से पढ़े, क्योंकि ये हमारे दिल की बात होती थी। तो बस ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें हमें याद आती हैं, और उन दिनों को याद करके हम खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। और ऐसे में ये गाना रोमांस की दुनिया में ले चलते हैं आपको, मेरी सोनी मेरी तमन्ना, साजिद जी आपके लिए, सभी सुनने वालों के लिए, और ख़ास तौर पर हमारे लिए भी। थैंक यू।

0: जा ये प्यारा सा गाना तुम्हें प्यार करते हैं करते रहेंगे फ्रॉम द मूवी अप्रैल फूल और ये गाना नमस्ते गुड आफ्टरनून आपको भी ज्ञान बिहारी जी फॉर वाइफ सबीता सिस्टर नोगीता संजीव सुनील रानी एंड फॉर ऑल और एंड फ्री लिसनर्स एक्चुअली ज्ञान जी आप कह रहे हैं एज यूजुअल योर ओल्डीज सॉन्ग्स शो इज़ वेरी सिलेक्टिव थैंक यू एंड फैंटास्टिक थैंक यू सो मच नाइस टू लिसन और हमें अच्छा लगता है कि आप हमें सुन रहे हैं और ये गाना जो है इट्स ए ट्रिब्यूट टू लेट सुमन कल्याणपुर हु पास्ड अवे लास्ट वीक हमेशा उनकी याद आएगी ऑफकोर्स और उनकी जो प्यारी प्यारी सी आवाज़ है हमेशा गूंजती रहेगी इन द हार्ट ऑफ ऑल म्यूजिक लवर्स सो ये गाना हमें लेकर जाए लेकर गया अभी के लिए हम ये जो म्यूजिक सुन रहे हैं ये जाएगा 2 बजे तक और 2 बजे के बाद 90s वाले स्वीट स्वीट गाने आपके लिए पेश करने वाले हैं आपने इतने प्यार से हमारा साथ दिया अभी तक थैंक यू सो मच तो नाम जोड़ेंगे इसमें शारदा जी की और शारदा जी और सभी सुंदर परिवार जो हैं सभी को शुभ दिन कह रही हैं थैंक यू साथ में है विश्वानी डुमन जी आपका ये जो गाना है हम नहीं चला पाएंगे हमेशा चलाते हैं बस आज नहीं चला पाएंगे तो ये गाना जाएगा बहन इंदिरा के लिए शारदा सहेली नीला प्रतिभा शोभा और गीता का जादर के लिए और अमृता जी और प्रणदेव पापा आपने जो गाना मांगा एक्चुअली ये गाना नहीं है हमारे पास हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और चलाएंगे शायद अगले सप्ताह नहीं तो आपसे बात करके अच्छा लगा तो ये गाना आपके लिए और साथ में आपके पति दानंद के लिए तो मिलते हैं वेरी सून 2 बजे के बाद
1: खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति आपको नमस्कार
2: नमस्कार परी श्रोताओं को भी नमस्कार मॉरिशस दुनिया का प्रथम चीनी उत्पादक देश बनने की राह पर है जहां की सभी कारखानों को बोसिको का सर्टिफिकेशन प्राप्त है ये आधिकारिक सर्टिफिकेशन स्थिरता की गारंटी है जो इस बात की पुष्टि करता है कि उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण की सुरक्षा के अनुकूल है ये इस बात का सबूत है कि स्थानीय स्तर पर लिए जाने वाले प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं पिछले हफ्ते लगे बोसिको इंस्पायर अवार्ड्स 2026 के अंतर्गत शुगर सिंडिकेट की खास प्रशंसा की गई 2026 के लिए गन्ने की कटनी कुछ ही दिनों में शुरू होगी इससे पूर्व हर साल की तरह कौंजाब में अम्मा तुके कोविल में पारंपरिक प्रार्थनाएं की जाती हैं आज की विशेष पूजा में कई महानुभाव उपस्थित हुए कटनी का ये नया सीजन इस साल 22 जून से आधिकारिक तौर पर शुरू होगा फसल अच्छी रहे और कटनी उचित तरीके से बीते इसके लिए अम्मा तुके का आशीर्वाद लेना मॉरिशस में एक परंपरा सी है इस साल के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार गन्ने का उत्पादन लगभग 2,25,000 टन तक पहुंचने की संभावना है जबकि पिछले साल पैदावार 2,20,000 टन के आसपास थी गन्ने की पेराई का काम 22 जून से आलतेओ और 13 कारखानों से शुरू हो रही है जबकि ओमनिकेन में उत्पादन 14 जुलाई से शुरू होगा सैलरी घोटाले के मामले में डीबीपी ने एफसीसी को बेथॉन लाजेस के खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी है इस बात की जानकारी शुक्रवार को इंटरमीडिएट अदालत के समक्ष अपील करने के बाद एफसीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील त्रिशूल नागा ने दी इस मामले में बेथॉन लाजेस के खिलाफ गलत तरीके से प्रभाव डालने के कम 67 आधिकारिक आरोप दर्ज हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मध्य अफ्रीका में इबोला का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है और नए मामलों में अचानक बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता

0: बढ़ा दी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोंगो और युगांडा में अब तक 471 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 84 लोगों की मौत हुई है। चिंता की बात यह है कि मात्र 24 घंटों के अंदर अंदर करीब 100 नए मामले और 20 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं, जिससे ये प्रकोप हाल के सालों के सबसे गंभीर एबोला संकटों में शामिल हो सकता है। स्वास्थ्य एजेंसियां संक्रमण को रोकने के लिए निगरानी, जांच और रोकथाम के प्रयास तेज कर रही हैं। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। स्टीवेंसन रोजिल में 66 साल के 66 years old जनाब अलीबाई हुसैन बकस, जनाब अलीबाई या हुसैन बकस जो गोरा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के ढाई बजे इनके मकान स्टीवेंसन रोजिल से उठा कर दफनाने के लिए पैंदीदाम का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। भरत सिंह स्ट्रीट लाफ्लोरा में, तिरपन साल के 53 years old श्री मनोज सिंह भरत जो रणधीर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह दस बजे इनकी माँ श्रीमती बिंदु भरत के मकान भरत सिंह स्ट्रीट लाफ्लोहा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंबा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

आपका हमारा साथ 12 बजे से लेकर अभी तक है 3 बजे तक चलेगा और अभी के लिए आपके स्वीट स्वीट मेमोरीज स्वीट स्वीट 90s वाले गाने घर आया मेरा परदेसी ये गाना अपने जमाने में कितना मशहूर हुआ करता था और ऐसे गाने सुनने में ऐसा लगता है कि मन खुश हो जाता है मन डांस करने लगता है झूमने लगता है और आपका क्या कहना है आप क्या कर रहे हैं अभी टाइम टी टाइम हो रहा है और वैसे प्रोग्राम के बाद भी हम तो चाय लेने वाले हैं और चाय से क्या होता है ना एनर्जी आ जाती है साथ में आप लोगों से बातें करके इतने खुश होते हैं कि क्या कहें बस आपका भी समय गुजर जाता है हमारा भी समय गुजर जाता है साथ में हम एक साथ कितनी सारी प्यारी प्यारी सी यादें समेट कर एक साथ शेयर करते हैं जो सुहाना सफर प्रोग्राम में आपका फिर से वेलकम करते हैं इस 30 घंटे में एक्चुअली लास्ट घंटा है सुहाना सफर का सो अगर आप सब लोग अभी 12 बजे से अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं तो थैंक यू सो मच लव यू ऑल फॉर दिस और हम भागे भागे आते हैं आप सबों के लिए और आप हमारा इंतज़ार करते हैं थैंक यू दिल से सो जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पर जाए ये गाना जितना सुने उतना कम है क्योंकि इस गाने में ना एक्चुअली बहुत सारी जो अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं दोस्त हो परिवार हो पति पत्नी हो या कोई भी हो बस जब कोई जो है परेशान होता है दुख होता है दुखी होता है तो उनका साथ कभी मत छोड़िए क्योंकि जितने लोग बीमार होते हैं ना कभी कभी जब वे बीमार हो जाते हैं चिड़चिड़ा सा लगने लगता है तो बस परिवार से अच्छी तरह से बात नहीं करते तब हम क्या करते हैं ये ना अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो हम इसको छोड़ देते हैं मगर ऐसी बातें नहीं है मेरे दोस्त कभी हमें हालात को समझना पड़ता है सिचुएशन को समझना पड़ता है अगर आपके पास कोई अपना प्यारा सा हो आप उनसे प्यार से बातें करें उनका साथ ना छोड़ें और ये जो गाना है एक्चुअली मनोज सोहन जी L'espérance Trébuchet से है कब से उन्होंने ये गीत मांगा है और बस अभी हम ये गाना चलाने वाले हैं 90s वाला गाना है फिल्म है जुर्म मनोज जी साथ में है उनकी प्यारी सी वाइफ नजीमा को सलाम है सभी सोहन परिवार के लिए एक्चुअली ये जो वे कह रहे थे मनोज जी कि पुरानी बातों को याद करते हैं और आजकल तो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनके ज़माने में जो अच्छी अच्छी बातें होती थी खेलते थे दोस्तों के साथ पता नहीं अब बच्चे लोग इन जैसे कहते हैं इन पलों को जी पाएंगे या नहीं मगर जिन लोगों ने इन पलों को जिया है बस आप सब लोग इन प्यारे प्यारे जो लम्हे हैं उनको समेट कर रखिए और बस ये गाना आप सबों के लिए जितने गया सिंह आश्रम के जितने रेजिडेंस हैं जितने लोग बीमार हैं बुज़ुर्ग हैं और जितने लोग अकेले हैं आप अकेले नहीं बस हमारा साथ है आपका साथ है और हम सब एक परिवार हैं तो जुर्म का गाना मनोज जी साथ में है नजीमा के लिए

0: RM3 Radio. Radio.
1: जा प्यार किया है चोरी चोरी ये था फॉर अनीता लाल जी और मोनाल बेया मोहब्बत फिल्म का गाना था अपने खास दोस्त के लिए अब चलाते हैं अकेले हम अकेले टू मूवी का प्यार भरा गाना राजा को रानी से प्यार हो गया और ये जाएगा स्पेशली फॉर श्रीदेवी और मुका सभी परिवार के लिए उनको ये गाना बहुत पसंद है और साथ में जाएगा अविनाश के लिए अविनाश गुरापा एंड फ्रेंड्स स्पेशली फॉर द मुटुको टीम मोंटाई ब्लॉन्च की माया जी के लिए और साथ में अनुराधा जी बोल रही हैं हम बहुत बात करते हैं हमारा काम ही है बात करना बस कभी कभी एक टॉपिक लेकर आते हैं और उस पर कुछ बातें करना भी पड़ता है मगर अभी के लिए नाइटीज़ वाले गाने में नाइटीज़ वाले सेक्शन में थोड़ी ही बातें करेंगे बस ये गाना आप सबों के लिए

हाँ जी, देखते ही देखते 3 घंटों का ये जो प्रोग्राम है ख़त्म होने वाला है और शाम होने वाली है, सो आप सबों को शुभ शाम। और बाकी जो बच्चा है रविवार का, आप उसका भरपूर वो आप लीजिएगा एडवांटेज। और आप लोग क्या करने वाले हैं, टीवी देखने वाले हैं, रेडियो सुनने वाले हैं, साथ में खाना पकाने वाले हैं, परिवार के साथ समय बिताने वाले हैं, बस जो भी करें खुशी से करें, खुश रहिए। और जो आज आपने अपने दिल की अनमोल यादें हमारे साथ साझा की, किसी ने अपने माता पिता की याद की को याद किया, किसी ने बचपन को, किसी ने दोस्तों को, और किसी ने पुराने सुनहरे रविवारों को, पुरानी राहों को। वैसे यादें जीवन का वह संगीत हैं जो कभी

खामोश नहीं होता सो बस खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनों के लिए समय निकालते रहिए जाते जाते एक दो नाम लेते जाएंगे जिन्होंने अपने हमें मैसेज भेजा और मैसेजेस पढ़ने का मौका नहीं मिला तो ये है अमजा आयशा फॉर हस्बैंड अमजाद हेलो आपको भी माया और मोटाई ब्लॉश और साथ में है जो

हमारे बाद आएंगे ऐसा भी होता है प्रोग्राम लेकर अजय प्रताप सिंह और ये जो गाना हम पेश करने वाले हैं आप सबों के लिए एक्चुअली ये गाना हमें बेहद पसंद है सुबह से प्यार में होता है कभी दिल दुखता है कभी दिल टूटता है कभी दिल खुश हो जाता है बस अकेले हम अकेली तुम मूवी का गाना है इसको एंजॉय कीजिए लॉट्स ऑफ लव टू यू फिर मिलते हैं अगले सप्ताह बाय बाय

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें अदिति से आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी श्रोताओं को भी नमस्कार मॉरिशस दुनिया का प्रथम चीनी उत्पादक देश बनने की राह पर है जहां ये सभी कारखानों को बोंसिखो का सर्टिफिकेशन प्राप्त है यह आधिकारिक सर्टिफिकेशन स्थिरता की गारंटी है जो इस बात की पुष्टि करता है कि उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण की सुरक्षा के अनुकूल है ये इस बात का सबूत है कि स्थानीय स्तर पर लिए जाने वाले प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं पिछले हफ्ते लगे बोंसिखो इंस्पायर अवार्ड 2026 के अंतर्गत शुगर सिंडिकेट की खास प्रशंसा की गई 2026 के लिए गन्ने की कटनी कुछ दिनों में शुरू होगी से पूर्व हर साल की तरह कौंजाब की अमातु के कोविल में पारंपरिक प्रार्थनाएं की जाती हैं आज की विशेष पूजा में कई महानुभाव उपस्थित हुए कटनी का ये सीजन इस साल 22 जून से आधिकारिक तौर पर शुरू होगा फसल अच्छी रहे और कटनी उचित तरीके से बीते इसके लिए अमातुके का आशीर्वाद लेना मॉरिशस में एक परंपरा सी है इस साल के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार गन्ने का उत्पादन लगभग 2,25,000 टन तक पहुंचने की संभावना है जबकि पिछले साल पैदावार 2,20,000 टन के आसपास थी गन्ने की पेड़ाई का काम 22 जून से अल्तेओ और त्या कारखानों से शुरू हो रही है जबकि ओमनिकेन में उत्पादन 14 जुलाई से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मध्य पूर्व में इबोला का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है और नए मामलों में अचानक बढ़ोतरी से स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोंगो और युगांडा में अब तक 471 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं जबकि 84 लोगों की मौत हो चुकी है चिंता की बात यह है कि केवल 24 घंटों के अंतर्गत करीब 100 नए मामले और 20 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई जिससे ये प्रकोप हाल के सालों के सबसे गंभीर एबोला संकटों में शामिल हो सकता है स्वास्थ्य एजेंसियां संक्रमण रोकने के लिए निगरानी जाँच और रोकथाम के प्रयास तेज कर रही है इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो आज्ञा दीजिए नमस्कार
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Musty
1: in the mix.
2: Continuous music.
1: RM3.
3: ऐसा भी होता है on RM3.

एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। कलयुग का अंत अब दूर नहीं है। सहने की भी एक सीमा होती है, और जब हम सह नहीं पाते तो गड़बड़ हो जाता है। कौन किसको बचाएगा? काल जब आपके सामने है तो क्या कर सकते हैं? भगवान ने क्या सोचकर इंसान को बनाया, और इंसान ने क्या कर दिया इस दुनिया में आकर? प्रस्तुत है अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक ऑरियन फ्री रेडियो मनोरंजन, और ऑरियन फ्री रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर आप हमें देख पा रहे हैं, थैंक यू जी। ऐसा भी होता है अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम। सो स्वीकार कीजिए अपने होस्ट दोस्त अजय प्रताप सिंह सीतालू का प्यार भरा नमस्कार राधा वेलकम। एंड हियर वी गो विद द फर्स्ट ट्रैक, मेजर साहब प्यार किया तो निभाना। यस, बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के नाम।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ी पहाड़ का नाम क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ी पहाड़ का नाम है माउंट एवरेस्ट। यह नेपाल और चाइना तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर हिमालय पर्वतमाला में ये स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848.86 meters, यानी कि 29,031.7 feet समुद्र तल से ऊपर। एवरेस्ट के बारे में रोचक बातें ये हैं कि इसे पहले पीक 15 कहा जाता था। इसका नाम ब्रिटिश सर्वेश्वर जॉर्ज एवरेस्ट ने सम्मान में रखा, माउंट एवरेस्ट। यस, द बिगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। नेपाल में इसे समर सगरमाथा और तिब्बत में चोमोंगला कहा जाता है। यहाँ का तापमान सर्दियों में बहुत कम होता है और तेज़ हवाएं चलती है। हर साल दुनिया भर से पर्यटक माउंट एवरेस्ट में चढ़ने आते हैं। सन 1953 में एडमंड हिलारी और टेनवी नोवे ने पहली बार सफलतापूर्वक एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर इतिहास बनाया। यस, और पृथ्वी के केंद्र से दूरी के हिसाब से देखें तो माउंट चिम्बोराजो की चोटी पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर मानी जाती है, लेकिन समुद्र तल से सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। सो अगर आपको मौका मिले एक दिन जाने के लिए तो जाइएगा ज़रूर और देखिएगा माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा, कितना

विशाल है, बहुत समय लगता है एक पहाड़ चढ़ने के लिए, और कहा जाता है कि पहाड़ की चोटी में बहुत ठंड होती है. यस, बट इफ एवर यू कैन गो एंड क्लाइम द टॉप समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, वाओ, यू विल बी लकी. सो एक दिन जाइएगा ज़रूर और माउंट एवरेस्ट पर चढ़िएगा और भी बताइए कि आपको क्या फीलिंग होती है. यस, ऐसा भी होता है दुनिया में, इतना बड़ा पहाड़ भी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट.

अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम है, ऐसा भी होता है लाइव ऑन ऑल इंप्री रेडियो मनोरंजन एंड ऑन टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मनोरंजन एज वेल। सो हमारे दर्शक हमें देख सकते हैं और हमारे लिसनर्स हमें सुन सकते हैं ऑन ऑल इंप्री रेडियो मनोरंजन एंड यू कैन वॉच अस ऑन टिकटॉक पेज। इस दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ पर है? गिरजाघर का मतलब है चर्च, डू यू नो। प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपका नॉलेज, जनरल नॉलेज हम बढ़ा सकें। कल अगर क्विज़ हो रहा है कहीं पर, क्विज़ में आप भाग ले रहे हैं तो आपको जवाब मिल सकते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिगेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड? सो इस दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर का नाम है सेंट पीटर्स बाजालिका। यह पाया जाता है वाटिकन सिटी में और इसका निर्माण काल है 1506 से 1626 तक। क्षेत्रफल लगभग 23,000 वर्ग मीटर। इसमें एक समय में लगभग 7,000 लोग जा सकते हैं। 60,000 पीपल कैन प्रे इन दिस चर्च। वाह, क्या बात है। और यह ईसाई धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इसकी विशाल गुंबद, किसका डोम, दुनिया की प्रसिद्ध वास्तुकला में गिनी जाती है और इसके निर्माण और सजावट में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे मिचेलेंजेलो और गियान लोरेंजो बर्निनी का योगदान रहा। यस, बहुत साल लगे हैं इस गिरजाघर को बनाने में। परंपरा के अनुसार इसे सेंट पीटर की समाधि के ऊपर बनाया गया माना जाता है। हालांकि यह दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर माना जाता है, लेकिन कैथोलिक धर्म का आधिकारिक मुख्य गिरजाघर आर्चबाजिलिका ऑफ सेंट जॉन लैटरन है। सो याद रखिएगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर का नाम है सेंट पीटर्स बाजालिका एंड साउंड इन वैटिकन सिटी। वाओ। सो अगर एक दिन मौका मिले तो जाइएगा स्थल पर और जाकर देखिएगा कि चर्च कितना बड़ा है, कितना विशाल है। एट वन टाइम 60,000 पीपल कैन एंटर द चर्च एंड प्रे। ऐसे में सुनते अगला गाना, प्यार दो प्यार लो, प्यार दो प्यार लो।

0: प्यार दो प्यार लो, पर अफसोस आज की दुनिया में बहुत से लोग बहुत बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि किसी की भी जान ले सकते हैं। इसीलिए बहुत से देशों में डेथ पेनल्टी है, अगर कोई जुर्म करता है तो उसे फांसी की सज़ा मिलती है। सो फांसी की सज़ा यानी कि डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट, यह दंड है जिसमें किसी व्यक्ति को कानून के तहत मृत्यु दंड दिया जाता है। यह दुनिया के सबसे गंभीर और विवादित कानूनों में से एक है। देश के कानून के अनुसार यह आमतौर पर बहुत गंभीर अपराधों के लिए रखी जाती है, जैसे हत्या के कुछ विशेष मामले, आतंकवाद से जुड़े कुछ अपराध, देशद्रोही, अत्यंत गंभीर हिंसक अपराध, और हर देश के नियम अलग होते हैं। फांसी की प्रक्रिया, देश और कानून के अनुसार प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन सामान्य रूप से अपराध की जाँच, अदालत में मुकदमा, देश विद्रोह होने पर सजा, ऊपर अदालत में अपील का अधिकार, कुछ देशों में दया याचिका की प्रक्रिया। कई देशों में फांसी की सजा समाप्त कर दी है, कुछ देर अब भी इसे लागू रखते हैं। कुछ देशों में कानून में मौजूद है लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होती है। फ्रांस में फांसी की सजा समाप्त कर दी गई है। इंडिया में यह केवल बहुत दुर्लभ मामलों, रेयरस ऑफ रेयर में दी जाती है, और हर बहुत से देश में जो है फांसी की सज़ा मिलती है लोगों को। सो डिपेंड ऑन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, गंभीर अपराधों के लिए कड़ा दंड है, अपराध रोकने में मदद कर सकता है। विरोध करने वाला कहते हैं कि न्यायिक गलती की संभावना हो सकती है, मानवाधिकार संबंधी चिंताएं होती है, इसीलिए फांसी की सज़ा कानून, नैतिकता और समाज तीनों स्तरों पर लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। पर मैं सोचता हूं अगर एक व्यक्ति ने किसी मासूम की जान ली है पैसे के लिए, या तो उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ताकि दूसरे लोग ऐसी गलती ना करें। अक्सर हम देखते हैं अखबारों में, फेसबुक पर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर कि किसी ने किसी की हत्या कर दी पैसे के लिए, या प्यार में आकर या गुस्से में आकर। सो ऐसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आई नो हमारे देश में ये कानून नहीं है, पर बहुत से ऐसे देश है जहाँ पर ये कानून लागू है, टू बी हैंग टिल डेथ। अगर कोई व्यक्ति बुरा काम करता है, किसी की जान लेता है, सो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।
1: Let's go, let's go, let's go, let's go.

अभी 5 जून को हमने मनाया एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। इसका मकसद ये है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए ताकि कोई बीमारी न हो। आजकल हम देखते हैं कितनी बीमारियां हैं, डेंग हैं, चिकनगुनिया हैं, पता नहीं क्या क्या वायरसेस है। सो अगर आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहे, आने वाली पीढ़ी अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय करे, तो अभी से ही काम शुरू होता है। फायदे तो आपके घर से शुरू होता है, आपके बेडरूम से अपना पलंग तैयार करें, फिर घर को साफ रखें, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सभी को साफ रखना है। आपके घर आंगन को भी साफ रखना चाहिए और कूड़ा करकट एक बस्ता में डालकर आप रखें। और अगर पर्यावरण साफ रखेंगे तो सब कुछ साफ होगा। पर्यावरण को अगर हम प्रदूषित करेंगे, पोल्यूट करेंगे, तो इसका असर हम पर पड़ेगा, मौसम पर पड़ेगा। आजकल पोल्यूशन के कारण क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। आपने देखा इस साल मॉरिशस में कोई तूफान नहीं आया। आपने अंदाज़ा लगाया कि साइक्लोनिक सीजन में एक भी तूफान नहीं आया। सो दैट वुड बी वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट। अब हर प्रकार का पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन, सी वाटर पोल्यूशन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन। सो पोल्यूशन जो है कौन करता है? मैन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। सो 5 जून को चिंतन मनन करने का दिन था और उस दिन स्कूल में भी हमने बच्चों को सिखाया, कॉलेजों में भी, कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ वन एंड ऑल टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। आजकल हम देख रहे हैं कई देशों में सूखा पड़ा है, कहीं कहीं पर इतनी बारिश होती है कि सब डूब जाता है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वी हैव टू पॉन्डर ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एट ऑल कॉस्ट। और हमारा देश तो एक छोटा सा टापू है, सराउंडेड बाय सी वाटर। सो जस्ट इमेजिन अगर एक दिन क्लाइमेट चेंज हो, एक सुनामी आ गया यहाँ पर, ओ माई गॉड, तो क्या करेंगे? वी मे नेवर नो, लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स दिस मे नॉट हैपन, बट स्टिल आपको बता दें कि जो छोटे छोटे टापू ऐसे तेंसुलिया कहते हैं, और जब समुंदर का पानी हर साल बढ़ता जाता है तो एक दिन ऐसा होता है कि यह पानी टापू को डुबो देता है। सोचने वाली बात है। Yes, so always think about it, how to protect our environment, what are the means, what are the methods, radio ke zariye, social media ke zariye, TV ke zariye, school, college, university mein hum debate kar sakte hai, campaign, sensibilization campaign organize kar sakte hai, kaise log jagruk rahe apne environment ko lekar, kyunki it's high time. To raise alert about the environment, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मॉरिशस में बहुत ऐसे सीसाइड है जहाँ पर हर साल जो सी का जो वेव्स होता है वो बालू को बहा देता है और हमारे बहुत से कॉरल्स मर रहे हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, इट कैन बी वेरी डेंजरस, यू नो, मॉरिशस जैसा एक दिन पानी के अंदर भी आ सकता है। सोचिएगा ज़रूर दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है।

Ha!

दोस्तों, क्या आपने कभी किसी का झूठन खाया है? प्यार करने वाले एक दूसरे का झूठन खा सकते हैं। कभी माँ बाप अपने बच्चों का झूठन खाते हैं? थोड़ा सा खाना रह गया तो पिताजी खाते या माता जी। पर हमारे धर्मशास्त्रों में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने झूठे झूठन खाए हैं। शबरी का एक उदाहरण लेते हैं। नवदा भक्ति में शबरी का नाम आता है और शबरी के झूठे बेर की कथा भारतीय भक्ति परंपरा में बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा विशेष रूप में रामायण और बाद की भक्ति परंपराओं में श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। इनफैक्ट शबरी एक अत्यंत सरल, विनम्र और भक्त महिला मानी जाती है। कथा के अनुसार वे अपने गुरु की आज्ञा से वर्षों तक भगवान राम

हम के आने की प्रतीक्षा करती रही। कहा जाता है कि वे रोज आश्रम को साफ करती, रास्ता सजाती और सोचती कि शायद राम जी अवश्य आएंगे। और वनवास के दौरान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। शबरी आनंद से भर गई है और उस उनके पास स्वागत के लिए कोई राजसी भोजन तो नहीं था, केवल कुछ बेर थे जो शबरी ने तोड़े थे और झूठे बेर की कथा इस तरह से। कथा के अनुसार शबरी ने एक एक बेर को पहले चखकर देखा कि कौन सा मीठा है और कौन सा खट्टा। जो मीठा है उसने एक बस्ता में रख दिया और राम को अपने हाथों से खिलाया और राम बहुत प्रेम से उन बेर को खाते हैं। लक्ष्मण देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं कि यह औरत झूठा राम को क्यों खिला रहा है। राम मुस्कुराकर कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण यही भक्ति है, शबरी मुझे झूठा नहीं खिला रही, शबरी मुझे अच्छे अच्छे बेर खिला रही है, उसका प्यार देखो, उसका प्रेम, उसकी भक्ति देखो। फिर भी लक्ष्मण को कुछ समझ नहीं आया। और भक्ति में बाहरी वैभव के अधिक मन की शुद्धता महत्वपूर्ण है। सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण किसी भी औपचारिकता से बड़ा माना जाता है। ईश्वर के लिए व्यक्ति की स्थिति नहीं, उसका भाव महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए आज भी शबरी के झूठे बेर निष्कपट प्रेम, प्रतिज्ञा और भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। शबरी कितने प्यार से राम को खिलाती है, दुनिया भर यह दृश्य देखती है। ब्रह्मा विष्णु महेश फूल बरसाते हैं कि देखो शबरी जो राम जी की भक्त है आज वो धन्य हो गई। उसके द्वारा राम जी आए और शबरी ने अपने होठों से बेर को चक चक कर राम को खिलाए। वाह, ऐसी भक्ति दुनिया में हो सकती है? नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसा भी होता है, दुनिया में ऐसा भी हुआ है।

क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कभी किसी ऑडिशन को मौका मिलेगा बॉलीवुड में जाकर काम करने के लिए, या कभी किसी को मौका मिला है तो आपको बता दें कि जी हाँ, बहुत साल पहले एक व्यक्ति का नाम था जगदीश सिनंदन, उसे मौका मिला था वहाँ पर जाकर भारत में कलाकारों के साथ गाने के लिए। दैट वॉज जगदीश सिनंदन साहब, वे भारत गए थे, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गीत गाए कविता कृष्णमूर्ति के साथ, बट अफसोस कि वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। वो गाना था तेरी मेरी प्रेम कहानी दुनिया गाती रहेगी, जन्म जन्म का साथ है सबको सुनाती रहेगी। क्या आपने कभी सुना है वो गाना? जी हाँ, सो दैट वाज जगदीश सिनंदन, ही गॉट द ऑफर टू गो एंड सिंग वेज कविता कृष्णमूर्ति। जी हाँ, और वो भारत गए थे, बहुत सारे गानों की रिकॉर्डिंग हुई, पर अफसोस वो जो गाने हैं, वो फिल्म जिसके लिए उन्होंने प्लेबैक का सहारा दिया, दैट फिल्म वॉज नॉट रिलीज फॉर वन रीजन और द अदर। सो बहुत सारे फिल्मों के लिए उन्होंने गीत गाए थे कविता कृष्णमूर्ति के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली द फिल्म वॉज नॉट रिलीज। और जब हम एक्टिंग की बात करें, सो यस, एक्टिंग की बात करें तो कुछ मॉरिशन गए थे वहाँ पर ट्राई करने के लिए, बट दे डिड नॉट बिकेम फेमस फिल्म स्टार्स, पर मौका तो मिला। जी हाँ, मौका मिला लोगों को जाने के लिए। पर आज भी अगर आप में टैलेंट है एक्टिंग करने की, बोलने की, डांस करने की, सो आप भी एक दिन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अच्छे गाते हैं, या लगता है कि आप हीरो है या हीरोइन है, बहुत अच्छे हैंडसम ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, गोजस है, सो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। एंड वन डे व्हाई नॉट वी कैन सी आवर मॉरिशियन पीपल वर्किंग इन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। ज़रा कोशिश करके देखिएगा दोस्तों, कोशिश करने से तो खुदा भी मिल जाता है। सो दैट विल बी रियली मार्वेलस इफ वन डे इन मॉरिशियस गेट सम मॉरिशियन पीपल गोइंग टू वर्क इन बॉलीवुड। और फिल्मों में शायद कोई ऐश्वर्य राय के बगल में है, या आई डोंट नो प्रीति जिंदा के बगल में, आई वुड बी सो हैप्पी, यू नो। एंड इवन इफ यू सिंग सो वेल, सो व्हाई नॉट गो टू बॉलीवुड वन एंड ट्राई, और शायद आपको मौका मिल जाए, यू कैन सिंग फॉर दिस आर्टिस्ट। सो ऐसा हो सकता है दोस्तों, ऐसा हो सकता है।

फिल्म जन्म समझा करो किसी धमाकेदार गीत के साथ ऐसा भी होता है कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। 4 बजे का फ्लैश न्यूज़ के बाद डॉक्टर पूनम से आप सुनेंगे फिल्मी खजने प्रोग्राम। शाम के 3 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू जी। आपकी फ़ोन कॉल से SMS के भी धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन TikTok पेज ऑफ रेडियो मनोरंजन। I'll say you goodbye, but हमारी आपकी मुलाकात हो रही है आज रात के 9 बजे से 12 बजे तक रेडियो मॉन्शस रेडियो मनोरंजन पर। प्रोग्राम होगा भोजपुरी तड़का। सो आज रात को मिलते हैं 9 बजे। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। अजय प्रताप सिंह से तालुक की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल। बाय बाय। गॉड ब्लेस।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: इसमें शाम के चार बज रहे हैं। सुनते समाचार दीना जी के साथ नमस्कार।
4: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कौंजियाब स्थित कोविल अम्मा दुक्के में आज गन्ने की कटनी की प्रतीकात्मक शुरुआत के अवसर पर विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम, उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम तथा कई सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने गन्ना खेतीहरों के समर्थन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। साथ ही बगासी रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन को और बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मई महीने में दुनिया भर में खाद्य उत्पादों की कीमतें कुल मिलाकर स्थिर रही, लेकिन कुछ प्रमुख बाजारों में दबाव बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था FAO की नवीनतम फूड प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ खाद्य सामानों के दामों में कमी आई, जबकि कुछ अन्य सामानों के दाम बढ़े हैं। सर्दियों के मौसम में गैस वाटर हीटर के इस्तेमाल के साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। गलत तरीके से लगाया गया हीटर, हवा के आने जाने की कमी या खराब पाइप कार्बन मोनोक्साइड गैस के रिसाव का कारण बन सकते हैं। खासकर बाथरूम जैसे बंद स्थानों में एक छोटी सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का रूप ले सकती है, इसलिए हीटर का सुरक्षित इस्तेमाल और नियमित जाँच बेहद ज़रूरी है। विदेश में अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि संघर्ष विराम और बातचीत के प्रयास जारी है, लेकिन युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इस बीच अमेरिका में इस युद्ध को लेकर जन समर्थन लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। कई सर्वेक्षणों के अनुसार अधिकांश अमरीकी मानते हैं कि ये संघर्ष देश के हित में नहीं रहा और इसका असर अर्थव्यवस्था तथा महंगाई पर भी पड़ा है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के 4:06 हो चुके हैं और संडे का प्यारा सा दिन 7 जून 2026। आज गजल मोहब्बत की बात नहीं करनी चाहिए, कुछ गजलें हमारे अंदर एक कहानी बुनती हैं। किसी शायर ने इंतजार लिखा है तो किसी ने जादुई, किसी ने मुस्कुराहट और किसी ने वो दर्द जिसका नाम तक नहीं होता। आज की फिल्मी गजलों में हम उन्हीं एहसासों के सफर पर चलेंगे जहां कभी दिल मुस्कुराएगा तो कभी किसी पुराने लम्हे से मुलाकात होगी। मैं हूं आपके साथ पूनम और अगले एक घंटे अल्फाज, एहसास और गजलों की इस खूबसूरत महफिल में आप सबका साथ निभाऊंगी। साथ मेरा देते रहिएगा।
1: RM3 Radio.

0: नजर।
1: 4:12 हो चुके हैं दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। एक बहुत ही प्यारे शायर हुए हैं जिनका नाम है इब्ने इंशा। लिखते हैं, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। सच बताए दोस्तों, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, जिसे दिल से चाहे फिर हर चीज़ खूबसूरत लगती है, उसके सामने कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। शायद ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो इंजॉय कीजिए आपका ये कल 14वीं की रात, जगजीत सिंह के थ्रू।
0: RM3 Radio.

0: नजर।
1: 4:26 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं अपने ही फेवरेट प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ, और मैं हूं आपके साथ पूनम। एक बहुत ही प्यारी सी शायरा हुई है जिनका नाम है जहरा निगाह। लिखती हैं, किसी की याद में रोना भी एक इबादत है, किसी की याद में रोना भी एक इबादत है, अगर वो याद दिल से निकली हो। कुछ रिश्ते उम्र भर साथ नहीं रहते, मगर उम्र भर याद रहते हैं। आपके दिल में भी कोई ऐसा नाम होगा जिससे आप बात नहीं होती, लेकिन दुआ आज भी निकलती है कि जहां वो इंसान हो हमेशा खुश रहे, बस अपने लोगों में रहे, हमेशा मुझे भी याद करता रहे।
0: RM3 Radio.

4:32 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ। अमजद असलम इस अमजद लिखते हैं, चेहरे बदल गए लेकिन दिलों की प्यास वही है, चेहरे बदल गए लेकिन दिलों की प्यास वही है, हम आज भी मोहब्बत ढूंढते हैं और दुनिया आज भी वही है। कहते हैं ना, वक्त बदल जाता है लेकिन प्यार की तलाश शायद कभी नहीं बदलती। हर इंसान सिर्फ ढूंढता है तो उस सच्चे इंसान को, सिर्फ उस प्यार को, और हमेशा तलाशता रहेगा।

0: नजर।
1: अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज में साथी ओ मेरे साथी। अब हम बात करेंगे उस शायरा की, साहिदा हसन, जिन्होंने हमेशा बहुत सारी गजलें लिखी पर हमेशा एक ही बात कही, जिसने गजलों को समझ लिया, जिसने शायरी को समझ लिया, जिसने छोटे छोटे से नुक्तों को समझ लिया, यानी कि कहाँ पे बोलना है कहाँ रुकना है, उसने शायद जिंदगी को समझ लिया। शायरी में वो लिखती हैं, मैंने जब खुशी को छूना चाहा, उसमें किसी की याद मिली, जिंदगी ने हर मोड़ पर एक किताब सिखा दी। दोस्तों, कुछ लोग हमारी खुशियों का हिस्सा बन जाते हैं, फिर वो साथ हो या ना हो, पर कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से निकल जाते हैं पर हम उन्हें तब भी जगा देते हैं, और जब तक वो हमारे साथ होते हैं, हमारे दिल में होते हैं, हमारी वो किताब खुली होती है। तो यही मोहब्बत होती है, यही प्यार होता है, जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो सकता है पर मोहब्बत नहीं, जिससे होती है टूट के होती है और हमेशा होती है और रहती है।
0: RM3 Radio.

0: दोस्तों, कभी कभी दो लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, उनकी सोच मिलती है, उनके जज्बात मिलते हैं, लेकिन जिंदगी के रास्ते एक नहीं हो पाते और फिर मोहब्बत साथ नहीं चलती, बस एक खूबसूरत याद बनकर रह जाती है। ऐसे ही एहसास को अल्फाज दिए हैं शायर कलीम एजाज ने। लिखते हैं, हम सफ़र में थे मगर रास्ते अपने अपने थे, हम सफ़र में थे मगर रास्ते अपने अपने थे, दिल मिले भी तो क्या फ़ैसले अपने अपने थे। हर मोहब्बत की मंजिल शादी नहीं होती, कुछ रिश्ते बस दिल तक आते हैं और वही हमेशा के लिए ठहर जाते हैं, यही सबसे प्यारी चीज़ है।
1: RM3 Radio.

0: दोस्तों, जिंदगी किताब में कुछ पन्ने खुशी के होते हैं, कुछ दर्द के, और कुछ ऐसे जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। आज की फिल्मी गजलों में हमने ऐसे ही कुछ एहसास साथ महसूस किए। मुझसे पहले थे आपके साथ प्रताप जी, और मेरे बाद आने वाली हैं शीतल जी अपने प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और दिल को मोहब्बत से खाली मत होने दीजिए। मैं थी आरम थ्री पर आपके साथ रेडियो मनोरंजन पर पूनम। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, आदाब, टेक केयर।
1: RM3 Radio.

0: टाइम चेक शाम के 5 बज रहे हैं।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें।
5: चंद खूबसूरत सदाबहार लम्हों को यादें प्रोग्राम के जरिए गीत और संगीत के माध्यम से याद कर लेते हैं। कुछ ऐसे गाने जो पुराने होते हुए भी उनमें वही ताजगी है, तो इस तरह से मेरे जिंदगी में शामिल हैं। जहां भी जाऊं ये लगता है कि तेरी महफिल है। फिल्म आई थी 1980 में, सन 1980 में आप तो ऐसे न थे, राज बब्बर, रंजीता कौर, संगीतकार रही उषा खन्ना। एक ऐसा गाना जो कि आज भी लोगों के दिलों को धड़का देते हैं। मनहर उदास का एक वर्षन रहा, लेकिन आज हम यही गाना सुनेंगे हेमलता की आवाज में।

80 का दौर 80 का दौर रहा बदलाव का दौर गीत और संगीत ने फिल्मों को अलग मुकाम पर ले आए 80 का दौर रहा राहुल देव बर्मन का दौर एक के बाद एक अनगिनत हिट गाने दिए ये वादा रहा मिल गए आज तो लहर कुछ इस तरह ऋषि कपूर और तेनामुनीम पर फिल्माया गया

जी पर्दे से आया पर्दे से हम हैं लाजवाब। आदि बर्मन ने एक बार फिर अपने संगीत से लोगों को एक अलग दुनिया में ले आए, सपनों की दुनिया में ले आए, जहां प्यार मोहब्बत से जुड़े दर्द भी कुछ ऐसे पेश किए कि आज भी उन गीतों को सुनकर उन दिनों की याद आ जाती है। अनवर ने इस गाने में कुमार गौरव के लिए प्लेबैक दिया, उनके बगल में रही पद्मिनी कोल्हापुर।

सदाबहार गीतों के इस खूबसूरत लहर को हम आगे बढ़ाते हैं। ऐसा समा ना होता, फिल्म जमीन आसमां 1984 में हद ही खूबसूरत म्यूजिक कंपोजिशन आर डी बर्मन का रहा और गाने को लिखा अनजान ने।

शब्बीर कुमार एक ऐसे कलाकार रहे जिनके आवाज ने हिंदी सिनेमा को एक अलग पहचान दिया। एक ऐसा समय आया कि वे इस संगीत मंच से दूर हो गए। उनकी आवाज आज भी गूंजती है, आज भी लोगों को प्यार करना सिखाते हैं। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर। यहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया और उनके साथ आवाज मिलाई अनुराधा पोटवाल। ये गाना पिक्चराइज हुआ जैकी श्रॉफ और श्रीदेवी पर। जवाब हम देंगे फिल्म आई थी 1987 में।

one of the greatest voice of Hindi cinema, Lata Mangeshkar. कहीं न जा आज कहीं मत जा फिर मिले न मिले ये पल ये समा. लता जी ने इस गाने को प्लेबैक दिया था फिल्म बड़े दिलवाले में. उनके साथ संगीतकार रहे आर डी बर्मन. गाने को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने. फिल्म आई थी 1983 1983 में बड़े दिलवाले.

प्यार मोहब्बत के खूबसूरत अफसाने सदाबहार गीतों का ये सफर जारी है यादें प्रोग्राम में। सांसों से नहीं मोहब्बत से चलती है ये दुनिया। इस खूबसूरत गाने से आज भी लोग अपने प्रेम कहानियां सुनाते हैं। विजयता पंडित और अनिल कपूर पर ये गाना फिल्माया गया था 1985 की फिल्म रही मोहब्बत।

भारतीय सिनेमा में कभी कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं जो कि अपने एक पहली झलक से अपना एक गहरा छाप छोड़ जाते हैं। एक फिल्म आई थी 1984 में, पुराना मंदिर। इस फिल्म के गीत और संगीत ने हिंदी सिनेमा को बहुत प्रभावित किया। वो बीते दिन याद है, वो पल छिम याद है। इस फिल्म में लीड कैरेक्टर में नजर आए मुनीश भैल, संगीतकार रहे अजीत सिंह। इस गाने के मेल और फीमेल वर्शन रहे, लेकिन आज हम इसके फीमेल वर्शन सुनेंगे।

हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको मिली होती है ये बहार जिंदगी में। एक ऐसा गाना जो लोगों के दिलों को छू जाती है, प्यार करने वालों को प्यार के फलसफे सिखा जाते हैं। फिल्म आई थी 1986 में, जानबाज, डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एक्टर फिरोज खान। एक सुपरहिट फिल्म रही। इस फिल्म के सभी गाने लोगों को बेहद प्रभावित किए। श्रीदेवी इस गाने में बतौर गेस्ट अपीयरेंस नजर आई, आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं, आज भी ये गाना याद किया जाता है।

सुर और संगीत द मेलोडी ऑफ लाइफ तन्हा राहों में एक सहारे का इंतजार कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना मगर आना कुछ इस तरह से कि फिर कभी लौट के मत जाना 2002 में ये फिल्म आई थी अ म्यूजिकल ड्रामा फिल्म रही सुर मेन कैरेक्टर लकी अली और गौरी कर्णिक साउंड ट्रैक महालक्ष्मी अय्यर ने इस गाने को प्लेबैक दिया ये फिल्म जो कि एक म्यूजिकल सक्सेस साबित हुई द मैजिक ऑफ वायोलिन ने लोगों को दीवाना कर दिया हालांकि ये दोनों कलाकार इस फिल्मी दुनिया से दूर हो गए लेकिन इस गीत से इस फिल्म से आज भी हम उन्हें याद करते हैं

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के 6 बजे हैं।

0: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। कौंजियाब स्थित अम्मातु के कोविल में आज गन्ने की कटनी की प्रतीकात्मक शुरुआत के अवसर पर विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने गन्ना खेतीहरों के समर्थन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया और कहा कि जिम्मेदारी, एकजुटता, आर्थिक मजबूती और सामाजिक न्याय अगले बजट की प्राथमिकताएं रहेंगी। मई महीने में दुनिया भर में खाद्य उत्पादों की कीमतें कुल मिलाकर स्थिर रही, लेकिन कुछ प्रमुख बाजारों में दबाव बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था एफएओ की नवीनतम फूड प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। मॉरिशस में कोलोरेक्टल कैंसर के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार 2023 से 2026 के बीच केवल एक वर्ष में इस बीमारी के मामलों में 56% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। होर्मुज जलमार्ग में अमेरिकी सेना ने 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। अब समाचार विस्तार से। कौंजियाब स्थित अम्मातु के कोविल में आज गन्ने की कटनी की प्रतीकात्मक शुरुआत के अवसर पर विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम, उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम तथा कई सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने गन्ना खेतीहरों के समर्थन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। साथ ही बगासी रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन को और बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अगले बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया। जिनमें जिम्मेदारी, एकजुटता, आर्थिक मजबूती और सामाजिक न्याय शामिल है। गन्ना सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि मॉरिशस के इतिहास, अर्थव्यवस्था और पहचान का भी अहम हिस्सा है। नई गन्ना कटाई ऋतु की शुरुआत के अवसर पर कौंजियाब स्थित कोविल अम्मातुके में आयोजित प्रार्थना समारोह में चीनी उद्योग से जुड़े विभिन्न प्रतिनिधियों और हस्तियों ने भी अपने विचार साझा किए। इस दौरान गन्ना क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों, उत्पादकों के योगदान और उद्योग के भविष्य को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। मई महीने में दुनिया भर में खाद्य उत्पादों की कीमतें कुल मिलाकर स्थिर रही, लेकिन कुछ प्रमुख बाजारों में दबाव बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था एफएओ की नवीनतम फूड प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ खाद्य सामानों के दामों में कमी आई, जबकि कुछ अन्य सामानों के दाम बढ़े हैं। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: अप्रैल की तुलना में मई महीने में एफएओ खाद्य मूल्य इंडेक्स में 0.2% की हल्की गिरावट आई है। हालांकि वार्षिक आधार पर इसमें लगभग 3% की वृद्धि दर्ज की गई। वनस्पति तेलों और दूध से बने उत्पादों की कीमतों में आई गिरावट के कारण ये स्थिरता देखी गई, जबकि दूसरी तरफ अनाज और चीनी की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी आई है। कई प्रमुख उत्पादक देशों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के साथ साथ ऊर्जा और उर्वरक की बढ़ती लागत के कारण गेहूं, मकई और चावल की कीमतें बढ़ी हैं। शक्कर के दामों में सबसे ज्यादा 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई। ये वृद्धि दुनिया के अग्रणी उत्पादक ब्राजील में फसल की स्थिति को लेकर चिंताओं और भारत तथा थाईलैंड में

0: एल नीनो से जुड़े जोखिमों के कारण हुई है। एफएओ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जियोपॉलिटिकल तनाव, विशेष रूप से हॉर्मूज जलमार्ग जैसे प्रमुख व्यापार मार्गों पर उर्वरक आपूर्ति को बाधित कर सकता है और खाद्य कीमतों पर और दबाव डाल सकता है। भले ही मंडियों को लचीला माना जा रहा है, इसके बावजूद संगठन वैश्विक खाद्य सुरक्षा के जोखिमों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग कर रहा है।
1: जैसा कि हम बता रहे थे, गन्ना सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि मॉरीशस के इतिहास, अर्थव्यवस्था और पहचान का भी अहम हिस्सा है। नई गन्ना कटाई ऋतु की शुरुआत के अवसर पर कांचीआब स्थित कोविला मातुके में आयोजित प्रार्थना समारोह में चीनी उद्योग से जुड़े विभिन्न प्रतिनिधियों और हस्तियों ने भी अपने विचार साझा किए और इस दौरान गन्ना क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों, उत्पादकों के योगदान और उद्योग के भविष्य को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और वहां मौजूद डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अगले बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया, जिनमें जिम्मेदारी, एकजुटता, आर्थिक मजबूती और सामाजिक न्याय शामिल है। ज़रा जानकारी इस रिपोर्ट में।
2: हर साल जून महीने के पहले सप्ताह के दौरान गन्ने की कटनी के आरंभ होने से पूर्व कौजाबरी स्थित अम्मा तुके कोविल में एक विशेष पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी भी वहां उपस्थित अच्छी फसल के लिए अम्मा का आशीष प्राप्त करने गए। इस तरह अम्मा तुके के प्रति भक्ति और साथ में उन्हें आभार प्रकट करने के लिए एक का पहला गन्ना अर्पित किया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने नौजवानों को कृषि में संलग्न होने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के वास्ते खेतिहरों को दी जा रही सुविधाएं की याद दिलाई। इसके अलावा उन्होंने बागा से रिन्यूएबल एनर्जी विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
3: D'ici 2032, à partir de bagasse et de déchets, ça pourrait représenter à peu près 20% de nos réseaux électriques. Plus on produit l'électricité par le même, moins on peut bien produire pétrolier, moins ça pour nous. Ce qui fait l'initiative, et me saluer, c'est l'initiative Mauchesse Biomasse, qui peut encourager nous à produire l'électricité à partir de ce qu'on appelle wood chips. Et aussi des autres sources d'énergie renouvelable qui peuvent développer l'énergie solaire. Là aussi, je me donne beaucoup d'incentives qui me gagnent la région, si vous ne parlez pas. Et prenez en cours, là, vous trouvez. Vous êtes créé Maurice Durable. L'une récit arrive 23,4% d'énergie renouvelable dans Maurice. 23,4%, ça veut dire presque un quart, presque 25%. Mais en 2014 et 2024, qu'il arrive. Maurice et Durand, alors, au lieu de progresser, nous régler, disons nous régler là. Jodi, pourcentage énergie renouvelable, les moins que 17%.
2: प्रधानमंत्री ने भावी बजट संबंधी प्रमुख पहलुओं को उजागर किया।
3: Responsabilité, pas le bien populaire, besoin de respect, là. Solidarité, efficacité économique, mais avec justice sociale. Justice sociale veut dire même des gens qui sont en difficulté, ils ont continué de tout parti socialiste faire ça. L'objectif, c'est renforcer l'économie mondiale. Retournons quand nous étions renforcés. Assurer qu'ils nous continuent à gagner croissance et pour que nous réussissions seulement. Et dans des conditions, nous devons rester unis et nous devons solidaires.
2: हर साल सावन तमिल बेनेवोलेंट सोसाइटी और ओमनिकेन की ओर से इस तरह की प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। इस तरह इस समारोह से गन्ने की कटनी के सीजन का शुभारंभ हुआ।
1: सर्दियों के मौसम में गैस वाटर हीटर के इस्तेमाल के साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। गलत तरीके से लगाया गया हीटर, हवा के आने जाने की कमी या खराब पाइप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव का कारण बन सकती है। खासकर बाथरूम जैसे बंद स्थानों में एक छोटी सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का रूप ले सकती है, इसलिए हीटर का सुरक्षित इस्तेमाल और नियमित जांच बेहद ज़रूरी है। बेहतर स्वास्थ्य की राह अक्सर हमारी परंपराओं और जीवन शैली से होकर गुजरती है। इसी संदेश के साथ महात्मा गांधी संस्थान के इंडियोलॉजी विभाग ने एक विशेष समारोह का आयोजन किया। इस दौरान आयुर्वेदिक पाक

0: और आहार विज्ञान पाठ्यक्रम पूरा करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही इंडोलॉजिकल होराइजन्स न्यूज़लेटर के दूसरे संस्करण काफी का भी लॉन्च की भी लॉन्चिंग की गई और कार्यक्रम के में मौजूद विशेषज्ञों ने स्वस्थ जीवन के लिए पारंपरिक ज्ञान और संतुलित आहार के महत्व पर जोर दिया। और मध्यपुर में कई महीनों से चल रहे युद्ध के बावजूद मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति यानी जीडीपी में कमी और आर्थिक विकास में सुधार के पूर्वानुमान है। ज्यादा जानकारी विधिमा सिबुरन के साथ।
1: The key point to take from here is that even after factoring in the impacts of the Middle East crisis, that Africa's real GDP growth is doing well. It will still be above 4.0% at the end of 2026, even if the conflict continues up to 6 months.
2: मुद्रास्फीति में कमी और आर्थिक विकास में सुधार मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक के ये मुख्य पूर्वानुमान है। महंगाई दर 2026 में 6% से घटकर 2027 में 3.9% होने की उम्मीद है, जबकि इसी अवधि के दौरान आर्थिक विकास दर 2.8% से बढ़कर 3.8% होने का अनुमान है। ये ऐसे परिदृश्य है जो परिवारों को कुछ राहत दे सकते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं।
3: Le pouvoir d'achat pourra sans doute se stabiliser, notamment autour des produits.
2: अर्थशास्त्री मनीषा दुखनी बताती हैं, निश्चित रूप से खरीद शक्ति में स्थिरता आएगी, खासकर जरूरतमंद पैदावारों को लेकर, चाहे खाद्य हो, परिवहन हो या बिजली। कंपनियों के लिए 2026 की तुलना में 2027 में अधिक वृद्धि होगी।
3: Une demande intérieure qui sera potentiellement beaucoup plus dynamique. Que ça ne l'est aujourd'hui parce que on est quand même dans une situation où c'est beaucoup moins et un environnement macroéconomique qui sera potentiellement beaucoup plus prévisible.
2: इन उत्साहजनक संभावनाओं के बावजूद अफ्रीकी विकास बैंक ने रेखांकित किया है कि मॉरिशस अभी भी कुछ आर्थिक असंतुलन का सामना कर रहा है। देश में राजकोषीय घाटे बने रहने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि देश का खर्च उसकी आय से अधिक रहेगा। बजट डेफिसिट में ये अनुमान है कि हल्की सी बेहतर स्थिति होगी जो बजट से शुरू होगी, जिसे फिस्कल कंसोलिडेशन कहा जाता है। ऋण बहुत है और फिस्कल कंसोलिडेशन से हम ऋण को कम कर सकते हैं।
3: De dette assez haut, donc avec la consolidation fiscale, on va aussi potentiellement pouvoir maintenir le cap sur la diminution de notre dette.
2: रिपोर्ट में करंट अकाउंट डेफिसिट का भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि आयात अभी भी निर्यात की तुलना में अधिक बना हुआ है। हालांकि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आने वाले वर्षों में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है।
4: Le plus gros composant de notre trade balance.
2: हमारे ट्रेड बैलेंस का सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोल से संबंधित है। लंबी अवधि में कीमत कम हो रही है, जिससे करंट अकाउंट में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी घाटा कम होगा। दूसरी ओर पर्यटन और वित्तीय सेक्टर तथा आईसीटी सेक्टर से निर्यात से आय मिल रहे हैं, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया जा सकता है।
4: Continue à apporter pas mal de export earnings, donc de revenus. Ça va contribuer aussi à réduire le current account deficit.
2: रिपोर्ट में मॉरिशस को आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन के मामले में अफ्रीकी देशों के बीच एक रोल मॉडल के रूप में भी उद्धृत किया गया है। अफ्रीकी विकास बैंक ने विशेष रूप से टैक्स और अन्य सार्वजनिक राजस्व को प्रभावी ढंग से एकत्र करने की देश की क्षमता और साथ ही इसके वित्तीय क्षेत्र की मजबूती को प्रमुखता से सामने रखा है।
0: ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करना कई छात्रों को बेहद पसंद है, लेकिन इसके लिए या अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला की प्रक्रिया क्या है या वहां पर डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों से संबंधित रिपोर्ट क्या है, इस पर पेश है ये खास रिपोर्ट अदिति अवतार के साथ।
1: The key point to take from here is that even after factoring in the impacts of the Middle East crisis, that Africa.
5: ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से डिग्री प्राप्त करना मूल्यवान माना जाता है, लेकिन इसका दीर्घकालिक लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में इसका सदुपयोग कहाँ किया जा सकता है। निवास और नागरिकता नियोजन में विशेषज्ञता रखने वाली संस्था हेनली एंड पार्टनर्स के शोध से

0: यही बात सामने आती है। रिपोर्ट के लेखकों का कहना है कि परिवार अक्सर अपने बच्चों को शीर्ष विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उनके अनुसार वास्तविक रणनीतिक लाभ दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में करियर बनाने के अवसर में निहित है। देशों का मूल्यांकन 6 कारकों के आधार पर किया जाता है, जिनमें आय क्षमता, जीवन की गुणवत्ता, उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर और उच्च किस्म की शिक्षा शामिल है। ये सभी कारक मिलकर एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हैं जिस पर कोई भी विश्वविद्यालय रैंकिंग के लिए ध्यान नहीं देता, यानी किस देश में विश्व स्तरीय शिक्षा उच्च गुणवत्ता वाले जीवन का आश्वासन देती है। रैंकिंग में शीर्ष 15 देशों की पहचान की गई है। स्थिर आर्थिक वातावरण, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली और उत्कृष्ट करियर संभावनाओं, विशेष रूप से निजी बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल अनुसंधान जैसे क्षेत्रों के कारण स्विट्जरलैंड 100 में से 86 अंकों के साथ सबसे प्रथम स्थान पर है। सिंगापुर एशियाई पूंजी प्रवाह और वैश्विक व्यापार नेटवर्क को जोड़ने वाले रणनीतिक केंद्र के रूप में दूसरे स्थान पर है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां उच्च आय क्षमता और उत्कृष्ट रोजगार के अवसर मिलते हैं। ये अग्रणी विश्वविद्यालयों, वैश्विक वित्तीय केंद्रों और नवाचार संचालित अर्थव्यवस्थाओं के अद्वितीय संकेंद्रण को दर्शाता है। कनाडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध रोजगार बाजार और विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के समर्थन के कारण 5वें स्थान पर है। अवसरों से भरपूर अन्य गंतव्यों में ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जो यूरोपीय संघ का प्रवेश द्वार है। संयुक्त अरब अमीरात, जो धन, कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा का प्रमुख विश्व केंद्र माना जाता है, और न्यूजीलैंड, जिसे अपनी क्षमता प्रणाली और जीवन की गुणवत्ता के कारण व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष ये है कि आय का वैश्विक वितरण दर्शाता है कि किसी व्यक्ति की 80% से ज़्यादा आय जन्म के समय निर्धारित परिस्थितियों, मुख्य रूप से उस देश से निर्धारित होती है जिसमें वो रहता है।
1: विदेश में अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि संघर्ष विराम और बातचीत के प्रयास जारी है, लेकिन युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इस बीच अमेरिका में इस युद्ध को लेकर जन समर्थन लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, और कई सर्वेक्षणों के अनुसार अधिकांश अमरीकी मानते हैं कि ये संघर्ष देश के हित में नहीं रहा और इसका असर अर्थव्यवस्था तथा महंगाई पर भी पड़ा है। और मध्य अफ्रीका में इबोला का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है, और नए मामलों में अचानक बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोंगो और युगांडा में अब तक 471 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 84 लोगों की मौत हो चुकी है। और चिंता की बात यह है कि केवल 24 घंटों में करीब 100 नए मामले और 20 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई है। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब रजनी बीकर के साथ मौसम का हाल सुनते हैं।
2: मस्कारेंस के दक्षिण में एक काफी जोरदार एंटीसाइक्लोन है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर मौसम हवादार ही है और हमारे इलाके पर ठंड हवा की लहर चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात और कल सुबह के दौरान आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और रह कर बारिश होगी, मुख्य रूप से ऊंचाइयों पर। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कुछ इलाकों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। धीरे धीरे कल से ये कमजोर होने लगेगा। दूर समुद्र में और पश्चिमी, दक्षिणी एवं पूर्वी लगुनों में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 20 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 25 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:37 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:40 पर सूर्योदय।

पहुंचाने में हमें फिजान और माउचिन का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। रिश्ते आनंद लेन मौला शो में 72 साल के 72 years old के श्री सुभाष चंद्र चौधरी जो दरम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर श्री आनंद लेन मौला शो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। भरत सिंह स्ट्रीट लफलोरा में 53 साल के 53 years old के श्री मनोज सिंह भरत जो रणधीर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी माँ श्रीमती बिंदु भरत के घर भरत सिंह स्ट्रीट लफलोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खांबा की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। जेबेरोड रोजबेल में 65 साल की 65 years old की श्रीमती माला वीरापेन पैदाइशी नाम कानाई और जो माला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री प्रीतम वीरापेन के घर जेबेरोड रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माघीजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
3: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस सोमवार 8 जून सूरीनाम आर्य समाज में शाम के 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

This is Radio Marxist. Center. My

0: 95.5, North, South, 95.6, East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Nee so. सारे 6 बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है और आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एम फ्री रेडियो। आज 7 जून जी हाँ रविवार 7 जून 2026 और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए और आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम और ये कार्यक्रम चलेगा 7 बजे तक। हमें पता है कि इस समय आप लोग घर पर हैं या फिर बाहर जाकर गाड़ी में है अभी फैमिली के साथ, तो बस खूबसूरत गानों के साथ आप लोग एंजॉय कीजिए। और नई सोच कार्यक्रम ये आप लोगों का कार्यक्रम है। कहते हैं ना, जीवन में गिरना भी ज़रूरी है तभी संभलना का हुनर आता है, और ज़िंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है उसे कल कहते हैं।

0: RL3 Radio. Radio. Radio.
1: नहीं सो। कहते हैं जवानी वो दौर है जहां थकान कम और हौसले ज्यादा होते हैं, इसीलिए डर के पीछे मत छुपो, अपनी मंजिल के पीछे भागो, कल शायद वक्त हो पर ये ताकत ना हो। जी हाँ दोस्तों, जब तक ताकत है तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए जीवन में। और यहाँ पर 6:43 हुए हैं, हम यही दुआ करते हैं कि भगवान हमेशा साथ दे।

0: RM Free Radio. Radio.
1: कहते हैं जिंदगी एक तन्हा बाजार है, जहां जज्बात भी बिकते हैं और वफादारी भी अक्सर महंगी पड़ जाती है। इस तन्हा बाजार जिंदगी में लोग तो बहुत मिले, पर सुकून सिर्फ खुद में मिले। 6:54 हुए हैं। चलिए इस खूबसूरत गीत के साथ ये प्रोग्राम नई सोच प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। दिलों की आवाज़ प्रोग्राम हम पेश करेंगे इसके बाद।

है और मैसेजेस आप कर सकते हैं ऑन 5250620 और फ़ोन आप कर सकते हैं ऑन 4028070। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए, और बस आप भी साथ दीजिएगा। और कहते हैं ना, ज़िंदगी कभी हल्की सी बारिश की धुन लगती है तो कभी किसी अधूरे गीत का एहसास, पर जब मोहब्बत साथ हो ना तो हर पल एक खूबसूरत सरगम बन जाता है। फिर ना रास्ते मुश्किल लगते हैं, ना तन्हाई डराती है, क्योंकि किसी अपने की मुस्कान ही ज़िंदगी का सबसे हसीन संगीत बन जाता है। दोस्तों धन्यवाद आप साथ दे रहे हैं, और चलिए 80s और 90s के खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम हम करते हैं।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: जी हाँ, रात के 7 बज चुके हैं दोस्तों। जैसे कि हमने कहा 7 बजे आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम और ये कार्यक्रम चलेगा 9 बजे तक। आप भी साथ दीजिए और यहाँ पर आप गाने मांग सकते हैं।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: सात बजकर आठ मिनट हुए हैं दोस्तों। कहते हैं कभी मंजिल अलग और रास्ते अलग होते हैं, लेकिन हमें वहीं पर जाना है जहां हमारी किस्मत में लिखा है ना। तो चलिए, यहाँ पर शराबी फिल्म में से लिया गया किशोरदा की आवाज़ में ये गाना जाएगा रोहित जी के लिए, जो हमें सुन रहे हैं वो बासा से।

साथ होने को है दोस्तों और आप लोग सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। और चलिए यहाँ पर खास गाना हम चलाएंगे नंदिनी के लिए और वो है फिल्म आग से लिया गया। और जी हाँ, गाना फिल्म आग से लिया गया और ये गाना खासकर हम सुनेंगे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। तो जी हाँ, अगर आप लोग भी सुन रहे हैं तो भी झिझक आप मैसेजेस कर सकते हैं ऑन 5250620। जैसे कि हमने कहा, आप जहाँ पर भी है इस समय कुछ लोग ना सीसाइड पर होकर भी हमें सुनते हैं, अच्छा लगता है। फैमिली के साथ है, डिनर कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, तो बस आप लोग साथ दीजिए ऐसे ही। और ये गाना आपके नाम भी हम करते हैं।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: 7:42 हुए हैं दोस्तों, और जी हाँ, धीरे धीरे प्यार होने लगा। और ये गाना हमने चलाया हमारे सभी 90s लवर्स के लिए। कहते हैं ना, पहले सिर्फ बातें अच्छी लगती हैं, फिर आदत हो गई, और अब धीरे धीरे प्यार हो गया। ना जाने कब कैसे, लेकिन प्यार हो गया। और यहाँ पर अगला गाना फिल्म जुर्म से लिया गया, खासकर निशाल सजादा के लिए जो हमें सुन रहे हैं ट्रियोले से। और गाना खासकर वो मांग रहे हैं आरजे नीतू शाह, हंसनी, सुरेखा, पूनम जी और हमारे सभी रेडियो टीम के लिए, और खासकर उनके बेटे निशाल सजादा के लिए। फिल्म जुर्म का ये खूबसूरत गाना आशा जी और मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ों में।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: जी हाँ, दिलों की आवाज प्रोग्राम आप लोगों के नाम और यहाँ पर खास गाना हम चलाने जा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और आज 7 जून, जी हाँ, रविवार 7 जून 2026, कई लोग जन्मदिन मना रहे हैं और इस समय हमें सुन रहे हैं और वैसे देख भी रहे हैं लाइव टिकटॉक पर। और यहाँ पर खास गाना बर्थडे सॉन्ग वी विल विश जय अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है, सो वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे पूरे एमबीसी टीम की ओर से। और साथ ही साथ में अजमेर खान, और वो गाना डेडिकेट करना चाहते हैं अपनी बेटी अजमेरी के लिए, आज उनका जन्म दिवस है, तो जन्मदिन की शुभकामनाएँ आपको। हमेशा साथ दीजिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए गानों के साथ। और साथ में जुड़ चुके हैं यहाँ पर राजीव गंगाराम, हेलो आपको, हिमेश है और मानोज पिरतिया है जो रहते हैं सेबास्टोपोल, और दानी जगरू फ्रॉम गुडलैंड्स, नाजियाना है, इंदिरा लौटन जी हैं, आरती राम सहाय और रवि भी है। जी हाँ, थैंक यू सो मच, नाइस सॉन्ग सिलेक्शन, बहुत धन्यवाद। और हमारी प्यारी पूनम कुमारी जी है, डॉक्टर पूनम कुमारी, हाय टू यू।

0: You're listening RM3 Radio. दिलों की आवाज़ की आवाज़
1: 8:10 हुए हैं और यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं. यहाँ पर खास गाना हम चलाने जा रहे हैं स्वेनल के लिए. जी हाँ, और वो हमें सुन रही है इस समय. गाना फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं. जी हाँ, हमेशा आपके दिल में रहते हैं फिल्म का नाम है. और गाने वो मांग रहे हैं श्रावण, भाभी, कीर्ति, अभिनव, कियान, नाविया और तिलक फैमिली के लिए. और टन्यू ब्राइड जो शादी करने जा रहे हैं उनके लिए भी हम गाना चलाएंगे ऑफ कोर्स. और यहाँ पर जुड़ चुके हैं विशाल. जी हाँ, विशाल जो हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच आपको. इंदिरा मताऊ सिंह, आपके नाम भी जाएगा, नमस्ते आपको. और आप गाना मांग रहे हैं राजेश के लिए और प्रकाश के लिए. और नीरम जी है, जी हाँ नीरम जो हमें सुन रही हैं, और ख़ासकर अनीता जो हमें सुन रही है फिकॉफ्लाक से. तो चलिए शंकर महादेवन की आवाज़ में

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: हाँ, बजकर 10 मिनट हुए हैं और यहाँ पर 80s और 90s के गाने हम चला रहे हैं। जी हाँ, याद दिला दे, 80s और 90s के गाने। और साथ में यहाँ पर संजय बुढ़वा है जो हमें सुन रहे हैं और हाय कह रहे हैं, हेलो टू यू। और जितेन डुलवा भी है, नमस्ते आपको, आपके लिए अगला गाना जाएगा। सुभाष जी है और गाना किसी मांग रहे हैं, ऑडियो करेक्शन। जी हाँ, पहले तो आप अपना नाम तो बता दीजिए क्योंकि आप गाना मांग रहे हैं पति प्राणन के लिए। और एवो है, गाना मांग रहे हैं पैथिक और केविन के लिए। और साथ ही साथ में पामेला है, कृष्णामा वर्दिन,

और साथ ही साथ में यहाँ पर तारा है जो हमें सुन रही है, उन्होंने गीत की फरमाइश की है फिल्म पत्थर के फूल। जी हाँ, मौत से क्या डरना, कल किसने देखा है, लेकिन मौत से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर मुसाफिर हैं, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। और खासकर प्रीति श्रामधनी हैं जो वो भी हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंजल है जो गाना मांग रही हैं अपनी भतीजी श्रेयासी साहा के लिए। श्रद्धा लखनोट है, धन्यवाद आपको। और अनिता प्यातोब है जो हमें सुन रही है फ्रॉम फिक ऑफ लक।

कहते हैं याराना वो रिश्ता है जो खून से नहीं एहसासों से जुड़ा होता है। जब पूरी दुनिया टुकरा दे तब एक दोस्त का कंधा ही इंसान को फिर से जीना सिखा देता है। सच्चे यार कभी जिंदगी को आसान नहीं बनाते, पर हर मुश्किल में साथ चलकर उस बोझ को हल्का जरूर कर देते हैं। 8:19 हुए हैं और दोस्तों यहाँ पर खास गाना हम चलाने जा रहे हैं, याराना फिल्म से लिया गया और ये गाना जाएगा प्रीतिश रामधनी के लिए और उनके परिवार के लिए, परिवार और दोस्तों के लिए भी। और यहाँ पर वैदही है जो हमें सुन रही है, देख भी रही है, आपके नाम जाएगा ये गाना। और साथ ही साथ में स्वीट बनी है और योगेश जी हाँ, सुनील बेरवाल, आपके नाम भी जाएगा गाना। और जी हाँ हमें सुन रहे हैं सानिश, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। रिदवान है, हेलो आपको। और आफिज़ा, जी हाँ आफिज़ा गाना मांग रही है साइलिश के लिए।

0: You're listening RM Free Radio. Radio. दिलों की आवाज,
1: जी हाँ, ये गाना प्रीतिश के लिए था और वो हमें सुन रहे हैं अपने परिवार के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 8:24 हुए हैं, नहीं 25 मिनट, आज 8:25 हुए हैं और ये समय ना जल्दी जल्दी बीता जा रहा है। कहते हैं ना, हंसते हंसते ये रास्ते कट जाएगा। जी हाँ, और ख़ास गाना हम चलाने जा रहे हैं माया रामदोस के लिए। जी हाँ, इस समय वो सुन रही है। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं विराज रामपागे। ओ, हमें हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, थैंक यू सो मच आपको। और जाद भी है, जाद जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर अनिता जी गाना मांग रही हैं अपने पति राज, बेटी अंतिश, अंकुश, बहु मनीषा, आशिमा, पोती हिमेशा आदिया और पोते हैं अंश, उनके नाम भी गाना जाएगा। जी हाँ, बहुत धन्यवाद आपको। और साथ ही साथ में खून भरी मांग फिल्म से लिया गया, साधना सरगम और सोनाली की आवाज़ों में।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: जैसे कि हमने कहा, काफ़ी लोग हैं जो मॉरिशस में नहीं हैं, विदेश में हैं और हमेशा हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, देखते हैं और उनको हम कहेंगे तहे दिल से धन्यवाद आपको। और यहाँ पर विश्वनाथ प्रयाग है जो हमें सुन रहे हैं त्रिनिदाद से, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। और आप हैं शिरीन रामजॉन और गाना वो मांग रही हैं अपनी तीन बहनों के लिए। जी हाँ, नाम है फजीला, नूरबे, रुकियान और हमारे सभी लिसनर्स के लिए। और साथ ही साथ में फेडिनंद मिथुन के लिए, जी हाँ वो रहते हैं यूके लंदन और इस समय हमें सुन रहे हैं। विक्रम और स्वीटिना, जी हाँ ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं आपको, हम कहेंगे धन्यवाद। और BHS ग्रुप आपके लिए भी ये गाना, हम साथ साथ हैं टाइटल सॉन्ग। ओके, BHS ग्रुप जो स्पेशल थैंक्स टू ऑल क्लाइंट। चलिए, गाना आपके नाम।

0: दिलों की आवाज, दिलों की
1: आवाज। जहाँ कहते हैं ना, जब परिवार साथ देता है, भाई बहन साथ देता है, तो जीने में और मजा आता है। जहाँ जिंदगी और खूबसूरत बन जाती है। और यहाँ पर खास गाना हम चलाने जा रहे हैं क्रूज के लिए, जो हमें सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। थैंक यू। और आपको हम कहते हैं हेलो सबिला सैराली, जो हमें सुन रही हैं। ब्रिंदा रूपना, आपको भी हाय। तनवीर खालिद है, जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम यूके। और हमारी प्यारी जेवीना है, जो देख रही है, सुन रही है। आपके लिए भी गाना जाएगा, और साथ में उनके प्यारे बेटे के लिए भी। और आप है रियाना फ्रॉम फिनिक्स, जी हाँ, आप सुन रही है। जैसे कि हमने कहा, 80s और 90s के गाने। चलिए, अकेले हम अकेले तुम फिल्म से लिया गया, उदित नारायण की आवाज़ में ये गाना चल पड़ा।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आज बजकर 10:40 मिनट हुए हैं। एक ऐसे गाने हैं जो हम कभी सुनकर थक नहीं जाते हैं और वो है सैयारा। जी हाँ, सैयारा, खासकर सानिश के लिए जो हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और ये गाना जाएगा इम्तियाज़ के लिए। जी हाँ, वो रहते हैं काठोबोन, आपके लिए भी ये गाना हम चला रहे हैं। चले श्रेया घोषाल फीमेल वर्जन

तो चलिए पूजा विशाल बाल गोविंद के लिए गाना वो मांग रहे हैं अपने पति के लिए, अजायल के लिए भी ये गाना जाएगा। रागिनी जी अर्जुन जो है हमें सुन रहे हैं, शैलिंदर गिल है, तिलेश आपके नाम भी और आयशा के नाम भी ये गाना

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों
1: की आवाज। रात बाकी, बात बाकी। वैसे जाने का समय आ गया है और हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ये समय जो है ना, कोई बात नहीं, हम जल्दी वापस लौट कर आएंगे और आप लोग, हमें पता है कि आप लोग साथ देंगे ज़रूर। और यहाँ पर साथ दे रहे हैं तरुण, गाना वो मांग रहे हैं फिल्म गुप्त से लिया गया। जी हाँ, आपके नाम ये गाना जाएगा। और सुदेवी जी है, नमस्ते आपको। प्रेमिला फ्रॉम फ्रांस। और पूनम अनट है, आपके लिए भी गाना जाएगा, लव ना गाना मांग रही हैं आशा। और आशा फकीर जो रहती है पिछे आफ्रे, कविता दुलीप है, थैंक यू सो मच। और जंदू जय जो गाना खासकर वो रहती है पोर्टलिस, आपके नाम गाना जाएगा। हमारे डीजे वाकिल हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग, आपके लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी। हमारी प्यारी गिनी दी के लिए गाना जाएगा। और साथ ही साथ में इंद्रा देव यादव, आपके नाम हम डेडिकेट करते हैं ये गाना। और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। आप लोगों ने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साथ दीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और जाते जाते बस इतना याद रखिए कि कल हो ना हो, आज पर फोकस करना है, है ना। तो चलिए, खूबसूरत गाना गुप्त का, ये खूबसूरत गीत। और इसी गीत के साथ उषा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।

0: continuous music. RM3.
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
0: कंटिन्यूअस म्यूजिक RM3।
2: भोजपुरी तड़का
3: सब संगठनों के अच्छे प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन। रेडियो मॉरिशस 719 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो मनोरंजन 94.95 98.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सबके स्वागत बस स्वीकार कर जाओ जय प्रताप सिंह सितालू के प्यार भरा नमस्ते और सलाम। भोजपुरी तड़का प्रोग्राम आज दिमास के रात दिमास 7 जून 2026 अभी से लेके रात के 11 बजे ले गमा जलसा थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तभी शक नंबर वा जाने और चले पहला गाना बाप दादा लोग के बोली विनोद सिद्धत की आवाज में जितना कोई हमने की सुना था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर गीत तो लोग नाम बाप दादा लोग के बोली।

सचर के भोजपुरी भाषा बाप दादा लोग के बोली की भाषा हमने के पूर्वज के भाषा है ताई भाषा के चेला हमेशा जीवित रखे के और फुटबॉल ऐसा एगो खेल है बड़े ही मजेदार खेल और आप लोगों में से ढेर कोई खुशिया फुटबॉल देखे के तो ढेर फुटबॉल खेले के तो फुटबॉल जो एगो गेम है एक में दुगो टीम रहेला और दुगो टीमों में ओंस ओंस हुआ दुगो टीम में रहेला और ये 90 मिनट के खेल है और खिलाड़ी जो है वो अगर हाथ से गेंद छू ले तो गोलकीपर अपन क्षेत्र के हाथ उपयोग कर तो अगर हाथ बुरा छू दे लगता फिर नहीं और फुटबॉल है जो गोल से खेला जाला और कि नहीं और तो फुटबॉल को बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है और दुनिया भर में ढेर मना देश में जो है फुटबॉल खेलन से लोग के हर सेवन के लापे ही मिलेला और लोग के डबल पैसा मिलेला खेल खेले के और जब फुटबॉल की बात करें थी सर तभी फीफा वर्ल्ड कप 2026 से शुरू हो 11 जून से 19 जुलाई ले एक में 48 टीम भाग लिए जा और उद्घाटन मैच मेक्सिको सिटी में हो और एक फाइनल हो 19 जुलाई 2026 की और शकीरा और बेनाबो ये फीफा वर्ल्ड कप की गीत ऑफिशियल गायन से दाई दाई या और याद दिलाते जा कि 2010 में शकीरा ऑफिशियल गीत गाई रहा फीफा वर्ल्ड कप के और गीत के नाम रहा वाका वाका ए ए सामिना

Amina Wakalila. Nan Afrika tu lah yad bana. Tapi cila football gigit sana pesan Niraj Gup Madhu. Niraj Gup Madhu ke awaz ni. Or gitu lah cila awaz ni isa Sangeeta Meeran ki naam Geto Karma Kar Bhai Dan Aji Rakshika Vanchika Hima Shanti Or gitu Rita Sitalu Khatir Saat mein सब लोगन के नाम जे कोई अभी हमने की सुनता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर अगर तू खुशी रह रहा सर तेरे खुशी से फुटबॉल देखे के फीफा वर्ल्ड कप जरूर देखे एमबीसी टीवी पर भी कर आए और रेडियो पर भी कर प्रसारण कर सर अभी की चला सुनब जा फुटबॉल के बारे में नीरज गुप्त मधु का बोला था

एकदम चकाचक जोली गीत रहल आशा करते तू गीत जरूर पसंद कर ले जा। और अब बात कर सकला सुन पुरनिया पकवान के बारे में। आगे के जमाना में हमने के दादी नानी लोग अच्छा अच्छा पकवान पकाते थे, जैसे दाल पीठा, दूध पीठी, दूध भात, मार छोंका, ये सब पुरनिया पकवान रहल। और चूल्हा में लकड़ी डाल के पकावत रही सर, और चटनी पिसातल होशकारी में चटनी पिसातल, जिपिस पिसातल, ओकरी मूसर के इस्तेमाल होता है। हमने कि दादा लोग, भाई लोग, चाचा लोग जाता है जंगल से लकड़ी आने, लकड़ी मचान पर रखाता है और रोज रात के जो है भोजन तैयार हो चूल्हा पर, तो पुरनिया पकवान लज्जेदार खाना के नहीं खुशी रहेगा, हाँ कि नहीं। और ऐसा में अगर समय भोजन करते तो बड़ी सब बोलना पेची सुरुचि शुभ आहार। अगला गीत संजय और सुरेखा बिहारी खातिर सब परिवार के नाम जो हमने के साथ जुड़ल हवन जा। और है गीत चलाते शास्त्री बनोमाली की उनकर पत्नी और बेटा बेटी दामाद और सब बनोमाली परिवार के नाम। तो पुरानिया पकवान के कबो नहीं भूले आजकल मॉडर्न खाना वा भैया, फिर भी पुराना पकवान के जो पुराना पकवान के स्वाद आहा मुँह में पानी चलावे ला। तो चलो अभी गीत समझा का पकता और गीतवा गए हवन सनी बॉयज यानी कि संजय गोविंद की आवाज़ में।

झटपट मसाला में आलू मसाला डब करता और मैं सोया डाल दे बस जोड़ी से और लाके जोया को तो मिली तो कितना जोड़ी हो जा रहा। हाँ अब बुझावल हम बुझब बुझावल हम बुझीला बुझावल कौन चे देवी ने और बेशक तर से पूछी रहा जा देखिए सर जन्म की नहीं कु तो आप कौन सी हा बोलता कुर तो आप पी माँ कुछ कुछ देर आप झाड़ू पीछी बात मामा वह लाकलस और वो कौन सन चीज है जो न पानी पीते ही मर जाला तू जाने लग कौन चीज है वो जो पानी पीते ही मर जाला वह आग और वो कौन सन चीज है और कौन सन चीज है वो जेकर चार गो गोरबा फिर भी वो चल नहीं सकेला वो कौन सन चीज है जेकर चार गो गोरबा पर चल नहीं सकला वो है मेज यानी कि लाटा बुझावल हम बोली रहते इधर देर बुझावन बा एन बोली सो वाला तेरा कौन चिया ता वो है बेतराब हो कि नहीं ता इसे ता देर बुझावल बा देर कोई नहीं जाने ना आगे के जमाना में जब सब कोई रात के भात खा ले होतलन सर सब कोई बैठ के बुझावल बोला तलन की दादी नानी लोग बोलता रहे बोला तल कलो कौन ची है जे कोई सही जवाब दे होतल लोग के वो कादो मिला तल आजकल कहाँ भाई सब भैया के बुझावल बोली रात तक कोई बात नहीं है ताइसन में चला सुनब जा अगला गाना बहुत ही प्यारा संगीत बुझावल हम बोली रहा रमा राम तो हल्के गावल है गीतर चलावत Saint Thomas SSS College के सब students teaching non-teaching staff और वहाँ के rector ने के नाम और जितना कोई भी रात के हमने सुना था ये तलों के नाम भी तू भी बुझावल बोलिया और बुझावल के ऊपर जवाब दिया जा चल एक साथ सुनें गीतवा

और हमने की प्रसारण लाइव एमबीसी मोकर से जिया रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तट का दिमाग की रात और गमत की रात जलसा की रात रात के 11 बजे ले। और जब हमने एमबीसी की बात की जैसे तो हमने के जो टीवी और रेडियो चैनल है एकदम नंबर वन और ढेर मना चैनल में हमने के श्रोता लोग हमने के एमबीसी टीवी चैनल देख रहे जैसे कि एमबीसी टीवी वन एमबीसी टीवी टू एमबीसी टीवी थ्री एमबीसी टीवी फोर एमबीसी टीवी फाइव एमबीसी सात और किड्स चैनल। और जहाँ रेडियो की बात है तो RM1, RM2 रेडियो मस्ती रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस। तो बेशक हमने की रेडियो सब सुनते रहिए और हमने की टीवी देखते रहिए एक से एक लाजवाब प्रोग्राम सजा के आने से 24 घंटे सातों दिन तो लोग खातिर रबी रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती दोनों चैनल पर चलता है प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। अगला गीत है पनिया बरसेला अविनाश लक्षण गिरा बगीत और हरी बड़ी सुरतना पानी नहीं बरसल रहे देख सर कि तूफानी मौसम तूफानी सीजन में तूफान भी नहीं आया कौन कहते हैं पहली बार और बा जो है कि मॉरिशस में कोई तूफान नहीं आ ना हमेशा तूफान नहीं दे रहे ना एक को अवैध जिसमें भी नहीं दलाल ये सब क्लाइमेट चेंज के प्रभाव है। तगड़ा गीत पनिया बरसेला गीत राविश बंधु किरण सकर माँ कर बाप कर भाई भौजी।

सब मंदू परिवार खातिर एक गीत भाई धनी खातिर रहे नाफलोगा और सोनंशी टंकी खातिर गीत चरी बहुत बहुत प्यार के साथ पनिया बरसेला।

0: Continuous music. Music. RM3.
1: 819 kilohertz. This is Radio Marches. Radio Marches.
2: पनिया बलसी तो कैसे कम हो कैसे मासों खेपी करी बोले तो जब ढेर बोटा पानी बरसे तो सब काम जो है थप्पड़ जला पर गुदेश में पानी

0: यो चेहरा कहे कि अभी के जलाशय में पानी कमती हो ली जाता हाँ कहे के बरिस उतना पानी नहीं बरसल बे जोंवियर से लेके भी जर्मन चारे साज ली सिर जहाँ हो सात जून गल बा पर उतना पानी नहीं बरसल बा जितना पानी चेहरा मिली क्योंकि तो पानी जाया नहीं करिए पानी हिसाब से इस्तेमाल करिए बाप रे बाप काहे पानी नहीं बरसल बा इतना बरिस का जनी हो कोची हो भगवान से प्रार्थना इंद्र भगवान से प्रार्थना कर हर पर हमने की चाची नानी लोग कहाँ वन से हर परवरी नहीं गावत हो सके चाची चाची नानी लोग हर परवरी गई है इंद्र भगवान के प्रसन्न करिए तब पानी बस कैन के कैसे वो मैंने की जलाशय में पानी आए पानी चहल है पानी जीवन है जीवन ही पानी है और जब हमने पर धर्म ग्रंथ में देखी ऐसा था ढेर बना उपनिषद जैसे कठोपनिषद ईश उपनिषद चांदोग्य उपनिषद केन उपनिषद अगर में से गो उपनिषद है कठोपनिषद कथा उपनिषद हर कोई बोले ला ये उपनिषद जो न यमराज और नचिकेत के बीच के वार्तालाप है तो कुछ खला एगो राजा के नाम रहल वाजस्रवस तब वो यज करता था तो यजवा में वो 100 गौ माता के दान देवता है तो बेटा नचिकेत बोलता था पापा तो ये सब गाय गौ माता के दान करते हुआ यज में तो हमरो हमर दान कब करबा तो बाप इतना गुस्सा हो कि बोल हम तो के यम भगवान के हाथ में यज कर के डाल दे तो ये सुन के नचिकेत चुन है वो यमराज भगवान नगे गल तो जब यमराज भगवान नगे जा रहा तो यमराज और नचिकेत में वार्तालाप होला गुरु और शिष्य यमराज है गुरु और शिष्य नचिकेत तो नचिकेत तीन गो वरदानों के मिलेला एक वरदान है कि नचिकेत के बाप की क्रोध शांति हो जाए दूसरा वरदान है कि नचिकेत के स्वर्ग मिली और तीसरा वरदान जो है नचिकेत के ज्ञान प्राप्त होला कि मृत्यु के बाद हमने के शरीर के कोंची होला तो ये बहुत ही सुंदर एक उपनिषद है थोड़ा मौका मिली तो जाइए यूट्यूब पर या गूगल पर टाइप करिए कठोपनिषद कर में ऐसा जोरी से यमराज अध्यापक के रोल करेला और नचिकेत स्टूडेंट के रोल और यमराज नचिकेत के सिखावेला कि ब्रह्म कौन ची है भगवान की है भगवान कहाँ वास करेला तो जरूर पढ़िए जाए उपनिषद जिक्र शीर्षक कर कठोपनिषद और अब बेगो गीत सुनब जात जी हाँ मजा कर ले मेरे जान बहुत ही प्यारा सा गाना है गीत अच्छी तरह विश्राम के नाम और प्रति ज्ञान आप मोदाल बे और ये गीत तो हमने चलावत है इस साथ में गीतवा कमला दिनों खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ कर चीज़ों फॉर सब परिवार खातिर प्रणव दुखन है गीत और खातिर तो सब परिवार के नाम और ये गीतवा चली अजय की ओर से भीमला खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना कोई कोशिश करता थोड़ा लाइन ना मिला था कोई प्रॉब्लम नहीं तो ना मजा कर ले मेरी जान फिर से ना होगा जवान ओहो बुरा बुरा मत करो बुरा है शैतान फिर से मिलो डार्लिंग दिल में है तूफान एकदम जोली गीत है तो लोग जोली जोली लोगों खातिर संग संग आप सर का बोले तो
1: मेरी जान फिर से ना होगा जवान मजा कर ले मेरी जान फिर से ना होगा जवान मिलेंगे मैदान करो और रहो निशान

मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होगा जवान, बुरा बुरा मत करो बुरा।

जवान बुरा बुरा मत करो, बुराई से आप तो बुरा बुरा नहीं करिए बाप। आज की दुनिया में बहुत बुराई बा, बहुत नफरत बा, जहाँ भी देख बा नफरत नहीं नफरत। काई से दुनिया अगर बा हो, हम तो रोज की पूजा के लिए भगवान सबके दिल में प्यार हो अपना अपन हो, पर सब लिखों खेलों के लिए आदमी लोग बरी व्योला हो, सब बाप रे इतना हिंसा से भरल काबुल बा बच के रहिए भैया। रात के समय भी और तू सुनाते हो रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन से जगह अच्छा कार्यक्रम भोजपुरी टड़का, जहाँ पर नाची रह सर, गावी रह सर और ढेर कुछ सिखाई रह सर भी, और तू लोग गीत भी मांगे रह सर, हमने की बचपन के बड़े प्यार से सुनी रह सर। और अब सुना आप तो लगे वो कहानी विक्रम बेताल की कहानी, इनकी याद बार जब हम छोटा रहे थे एमबीसी टीवी पर एक सीरियल आता विक्रम विक्रम विक्रम विक्रम बेताल बेताल बेताल बेताल बेताल विक्रम और बेताल की कहानी थी। कहानी रहल लोक कथाओं की कहानी कि बेताल पच्चीसी बुलाता है, लेकर में दूगो पात्र बा, एक राजा विक्रमादित्य जो इनको साहसी और न्यायप्रिय राजा है, और दूसरी ओर जंगल में एगो उल्टा लटका प्राणी रहल जिकर नाम रहल बेटा बेताल, वो गौची पर रहल। तो राजा विक्रमादित्य बिना डरे जंगल में जात हल, तो एक दिन एक रात का होल वो जन जंगल से जात हल, तो वहाँ पर ही बेताल रहल गौची में, छटक के राजा के कंधा में चढ़ गल। अब राजा तो जो साहसी रहल, तो बेताल बोलक हम तो हर साथ चलब, पर एगो कहानी सुना, पर अगर कहानी के बीच में तू जवाब दे रहा तब फिर से उड़ के घोंचा में चल जा। तो राजा के जो है बेताल राजा के धीरे मना कहानी सुनावेला, 25 को कहानी सुनावेला, पर हर बार राजा से प्रश्न करेला, राजा अपन वादा भुला जाला और उत्तर दे देला, तो फिर से बेताल जाके घोंचे में चढ़ के बैठ जाला। तो यही कहानी है विक्रम और बेताल के, हर वो कहानी में कुछ शिक्षा रहेला, आगे के लड़का लोग खूब पढ़ रहा विक्रम बेताल कहानी पुस्तक में भी रहल बहुत देसीने में, और साथ में टीवी पर भी आवत है विक्रम बेताल। तो अब चल सुनम जर को प्यारा सन गाना छोर के मोरिस्वा है, गीत अचरावती से मनीषा चामी सिंह की, और से पत्नी और तीन गो लड़का कर माँ का सास ससुर सब अचामी सिंह परिवार के नाम है। गीत चली एकदम खास गौबे के रतन निहाल के नाम, और पापा पत्नी करुणा पापा विजय सब निहाल परिवार के लिए, सुधीर जसवा मोहताबा से वन, और माँ राजकुमारी राज मन्ना और सब मन्ना परिवार मोहताबा से, जिमी दुखिया स्टीव चिबुग लोंग नानो राजा पुलु और सब संगत्यालों के नाम, और जितना कोई रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन सुनता वो लोग के नाम भी छोड़ के मॉरिशवा एकदम ही जोली गीत आती भगी रहती क्या आवाज़ में।

हाँ देखो ये भी विदेश में बा मॉरिस से छोड़ के गलवन सब अपने काम करे कोई पढ़े गल बा इटली कनाडा इंग्लैंड तो ढेर को अपने के सुना था जितना कोई विदेश से अपने के सुना था सब कोई के नमस्ते तो लोग के स्वागत बा एमबीसी रेडियो पर रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर। और अब हमने बात करब सा कटहल के बारे में। मुँह में तो पानी भरा ली कटहल जो है कटहल बजरा सा ये को फल भी है को सब्जी भी है क्या अंग्रेजी में जैकफ्रूट बोला सा तई दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन में से एगो है। और बेशक की कटहल जो है एक ये बहुत जीविकीटे से काटी रह सा कहे कि एक में दाग भरल रहेला और मोटा एक लापो हर तछना चोरी से गोल गोल काट के दाग निकाले के। और कटहल जो है पक्कल कटहल खाएला सब फ्रूट लेखा और बकावल कटहल कर तरकारी भी बनेला। कटहर के कैसे तैयार कर रहा सर कटहर मसाला में आलू डाल के सकब ओके मसाला में लटपट पकाए कटहर के सकब भूंजे कटहर के गजाक भी बनेला कटहर के बेंदाई भी बनेला। और बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना है। और बेशक एकर में कौन सी बा कटहर में कार्बोहाइड्रेट्स बा फाइबर बा विटामिन सी बा पोटाशियम बा तो देर को कटहर नहीं कुसिया खाए के पर कटहर जो है वो बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए है डाइजेस्टिव सिस्टम के अच्छा बनावेला और संतुलित भोजन के हिस्सा में बा कटहल और पेट के जो है वो अच्छा है कटहर के बदल तो पेट साफ रहेगा। ये सब्जी भी है जैसे कि हम बोली और एक फल भी है तो डिपेंड कर रहा कि तो लोग कैसे कर इस्तेमाल कर रहे सर कटहल भर बड़ी मोरिस में बाएँ कटहल के बिरयानी में भी वेजिटेबल बिरयानी में प्रयोग कर रहा सर कटहल के सर बकर बिया बुई करके खाई।

भी बड़ी मज़ेदार है और कटहल के जो नहकर बिंदाई भी बने रहा तो ज़रूर कटहल ट्राई करके देखिए और बोलिए हमके कैसे बुझा रहा है खाना। और अगला गीत सास के करा करा बोलिया बहुत ही प्यारा सा गाना शोभा नुमन गावतवन है गीत चाची प्रभावती लोल खातिर चाची ललिता कुशल जुन रहेला त्रियोले और चाचा आत्मा राम है गीत रिहाना हौसनानी के नाम आप रहन फिनिक्स नटराज राम कोरन हवन नोवेल फ्रांस से गीत और माता जी पिताजी और भाई बहन और सर नोवेल फ्रांस के राम कोरन परिवार खातिर कमला जी है गीत हो खातिर और आफेज हवन सैम से तो चलो एक साथ सुने है गीत और सास के करा करा बोलिया और सास करा करा बोलिया काहे बोले रहा अगर सास करा करा बोलिया बोली तो बहु लोग तो लोग कटहर के पका तकारी पका के सास के ख्या दिया वो करा करा बोली नहीं बोली कहे कि कटहर बहुत स्वादिष्ट है तो जब सास और से नाराज हुई तब बहु लोग कटहर की तकारी पका के बन सासू माँ के बोलिया खाल सासू माँ प्यार से बने ले है कटहर की तरकारी ओए होए कटहर की तरकारी लटपट आलू मसाला में

0: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
1: गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
2: कंटिन्यूअस म्यूजिक
3: किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस
4: तबलत संग जालो की प्रोग्राम कैसी लगता तोरा अच्छा लगता ना हमने के गीतों तो लोग के पसंद गीतों अच्छा लगता सुनने के कि ना ओए होए क्या बात है क्या बात है सब कोई नाचता गावता झूमता कमरवा डोलावता और ठंडा ठंडा कर लग बात ऐसे ठंडा के मौसम में ऐसे जुरी जुरी गीत ओए होए होए होए जी हाँ रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर तू सुनते हो और जी प्रताप सिंह सितालू के प्रोग्राम है भोजपुरी तड़का रात के 11 बजे और ये प्रोग्राम रोज के चले ला जाने ना ये प्रोग्राम रोज के चले ला 9 बजे से 11 बजे केवल एमबीसी रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर दिमाग के रात के भी ये प्रोग्राम चला था एकदम टकाटक और बोला सक कि हमने के देश में सबको अपन पसंद के लुगा खुशी रहला पहने के जब लुगा के बात करे ऐसा ढेर को गुजार आमद करे के जोरी लिखे के कोई खुशी रहला अपन साड़ी पहने के लहंगा चोरी चूड़ीदार शरारा पुरुष लोग धोती कुर्ता शमीज मोहतानो सोत सबको लिखे अपन अपन पसंद बा हाँ कि नहीं और जो लुगा महंगा रहेला तो ढेर जो कर रहा जुगे रहेला कोनो कोनो लुगा सस्ता रहे तो हाली फट जला पर कोनो कोनो लुगा जो है वो काफ़ी समय ले सक वो इस्तेमाल करे जितना महंगा रहेला कपड़ा उतना जस्ती दिन जाला तो ऐसे जुड़ी जुड़ी कपड़ा पहनते रहिए अलामत करते रहिए और सब कोई थोड़ा कॉम्प्लीमेंट बोली ये आज तो एकदम चकाचक दिखाते हुआ कहूँ शादी में गए हरदी में गए कोई बोल दे रहा वो पाकर ब्याह सूर्य आज जी दो मजे नाकते है एक्ट्रेस तो बाप रे बाप तुरक तो फूल के ठेकुआ हो जाला सर के नहीं खुशी है कॉम्प्लीमेंट खब कोई खुशी रहे ना तो हम यूँ कहूँ जाए सर सज धज के जाए ना सर काहे काहे कि नहीं सज जब धजब सर अरे जब ले जीवित रहा तब ले शरीर के छला सुंदर भगवान खुशी रहेला जब हमने अपन शरीर के सुंदर रहता शरीर के साथ साथ मन के भी सुंदर बनाएंगे हाँ कि नहीं तगला गीत चली चल लाली सिनेमा देखे जानकी सीसन की ओर से कर बेटा पर तो सब सीसन परिवार खातिर तीना बुना गीत तो हर खातिर तोहर पति दुगो बेटी सब बुना परिवार के नाम बिना कुबुसामी में बैग से हवन ओकर पति बेटी दामाद बेटा बहू और सब कुपु

स्वामी परिवार की नाम विश्वानी बाबूलाल हवन लाखों जार से गीत हो रो खरतीर तो हर पति तो हर लिखा लो खरतीर सुलमान दुर्खीत में बैग से हवन गीत तो हरो नाम चल लाली सिनेमा देखे अभी सिनेमा ने अभी गीत हो सुनप सा और जिधर कोई हमने के टिकटॉक पर देखे ला रेडियो मनोरंजन रेडियो मार्शल्स पर है गीत तो लोग के नाम आज टिकटॉक पर नहीं है ऐसा आज रेडियो पर है ऐसा ठीक बा रेडियो मनोरंजन और रेडियो मार्शल्स सुनते रहा रात के 11 बजे रही

0: 11 बजे ले रेडियो मॉन्स्टर्स रेडियो मनोरंजन पर हमने जानी ना सर की चलोगी प्रोग्राम एकदम पसंद करते हो कहे कि इतना प्यार से तो हमने की सुना था इतना तादाद में ढेर कोई हमने की सुना ढेर कोई घर पे हो जा ढेर कोई काम कर रहा था और हमने की सुना था अपन नौकरी स्थल पर जैसे फायर स्टेशन बा फायर सर्विसेज पुलिस स्टेशन कॉल सेंटर मेट्रो सर्विसेज अस्पताल क्लिनिक में जब कोई काम सोफिया लोग जितना कोई पसाज लेके जाता या पसाज लेके आवाता हमने की सुना था वन तो फिर भैया धीरे धीरे गाड़ी वन वन चलिए हमने के साथ देते रहिए और हमने यहाँ पर चलो के मनोरंजन करते ही सर और बोल सकी दुनिया में सबसे बड़ा है दान तो लापे जब मेरी हर महीना तो कम से खाली अगर नहीं सक ढेर तक 10 रुपया की कोनो गातो या कौन चीज किन के कोनो को लड़का के दीब या को गरीब आदमी के या को बेवा के या कोई के भी कौन चीज किन के दीब अपन लापे में से तो वो व्यक्ति के थोड़ा आशीर्वाद दे तो तुम्हार घर में हमेशा पैसा की कमी नहीं हो धन की भंडार हमेशा रही काहे के है जो दान है हमने के धर्म ग्रंथ में बोलल कोनो भी मजहब ले कोनो भी खरीजों में जाई पर कोनो भी सिख पर तो सब धर्म ग्रंथ बोले रहा दुनिया के वो चाहे बाइबल हो कुरान हो भगवद गीता हो तिरुवल्लुवर हो हर एक ग्रंथ बोले रहा दान करे के और हाँ जितना खुला रही वो अच्छा है कहे कि जब दान करब तो भगवान भी खुश होला हम नहीं बोलते सब पैसा दान करे के माना तो है लापे मिल रही थोंत के तो महीना फिनिशों के तो 10 रुपया के वो गातों के लिए बोले क्या के दे दे या को बीमार व्यक्ति के या को बेवा के या जन व्यक्ति के घर नहीं बा कौन चीज किन के दे दे रहा एगो प्यासा के पानी दे रहा पिए के एगो भूखा के खाना दे दे रहा तो भगवान भी खुश रहे तोरा इतना आशीर्वाद दे कि तोहर घर में कबो को चीज़ की कमती नहीं हम अनुभव से बोल रहे हमने के बरात मिल हम के सिखेलक बार हम यो ही करी रह सर हर महीना जब लापे मिलेला हमने के पगार मिलेला तो थोड़ा सा निकाल के कोई के दान कर दिया कोनो चीज़ खाए के या पिए के दे दिया तो व्यक्ति जीवन भर थोड़ा याद रखी और गमरपट चलते बा अब जलसा कर अब सर नाचब सर गाव अब सर चाची लीलो हमने के साथ देवतवन गाँवे से ओकर टीम वहाँ परी बा और खूब गमट करते हैं सब बतौन से आज जन्मदिन बा अशिता के चाची लीलो अशिता के ढे मना प्यार आशीर्वाद अशिता हबीब बर्थडे ढे मना प्यार और खुशी भाई की तो सुने के जलसा बा अंजू के गावल तो चल अशिता और चाची लीलो है गेर तो लोग ना जितना कोई गमट करता भी रात के जलसा बा चल जलसवा करे हो थपरी बजे के शुरू हो गल अब जलसा हो आहा
1: Ladies and gentlemen, namaskar, the boat parade.

Nidal Anju, Burton Casbah, Smith Lafaya, Casbah. हम भी इसे नाचा थे इसे स्टूडियो में कि क्या बोला. रात के समय भाई सही कमरवा डुलाईती रही है, नचते गईती रही है और दिन भर की थकान दूर कर हमने के भोजपुरी गीतों के संगम के लोकल ऑडिशन जोरी जोरी गीत गाई लग बा. और बिना से कि दुनिया में कोई पर फीए नहीं करिए, अपन हाथ से सब काम करिए, दुनिया में कोई पर भरोसा नहीं करिए भैया. और भगवान तोरा दू को हाथ दू गोड़ दिलक बना तो अपन हाथ अपन गोड़ के इस्तेमाल करिए. कहे कि कोई थोड़ा मदद करी तो काल के उठे के बोल रही हम तो खातिर हाई कर ले हाउ कर ले हाई. तो तू अपन हाथ से सब काम करिया और कोई पर फिर नहीं करिया. कभी कभी तो हर पति तो हर से बोल दे वेला हमके पाचगी नहीं करिया, पत्नी बोले तो दिल दुखा जरा ये खाती थोड़ा मन करता कौन चीज खाए के जा फ्रिज देख खोल के निकाल के पका के खा, थोड़ा मन करता कौन चीज पिए के जा फ्रिज देख खोल के निकाल

0: tepia. Ko ipal fie ni ka ya ka ba ba na ka lo ko ba amen sa pu mo ta le ka lo gnai ka le la koi koi ke nai ka ri bhaiya ai dunia me koi koi ke nai ba jab tor ko la ta cha ba pan ko ra se sab pan kaam kar ya agla geet jalsa lal ba oi hoi hoi jab te nach sab taro ke sang sang jalsa karab sa hai geet jun ha go whatsapp group ke sang te lok mangle hwan और जी फैमिली हवन जा और ये ग्रुप में ढेर कोई बात जैसे अगला गीत चली रितेश हमन खातिर आदित्य चटुआ अनिता पांचू अंजु किशुन आशील चिंतकी अजीजा बाल गोबिन फिर है गीत चलावत ईसा भाई गुरु भामा भारती बुलाकी वृंदा पांचू शाकिर प्रयाग सिंह कोठन देवी दागा दीना गिरीश लक्ष्मण गंगा अविन गनु विशाल हिरु कलपत्नी शालिनी कद्दू को बेटी और सब हिरु परिवार कलाई बानी गीतोहर खातिर केशव रिसोल गीतोहर पत्नी तो लड़का खातिर कृषि महादू मालिनी दौलत माया मिसबेनी नाबिन उदित परमानन प्रवीण बुधन कर्मा कर पिताजी और सब परिवार प्रीति बाबुआ प्रीतम भैरव ज्योति और कर बेटी प्रियंका पूजा और कर दामाद राविश सिंह राधा गनु रीता रोशन हरनाम रोशनी बिहारी रोसाई रिसोल शैलेश महाबेर सत्यम सुबोल शैलेन बंसी श्यामिनी सिद्दीक सज्जू तैयबा उजागिर उमा जगन्नायक रूसा वीरापेन विकास विनेश सुबन और व्यास शिव खातिर और जितना कोई रात के हमने की सुनाता था गीत तो लोग के नाम झेर कोई कुसिया गमट करके कनाडा से दीपा तिवारी दुखित होकर पति केविन बेटा और सब दुखित परिवार जो कनाडा से हमने की सुनाता था गीत तो लोग के नाम चला जलसा करे
1: रंगीली रात बाहो
0: है गीत अनिता जी के नाम आप फ्लिक ऑन फ्लाक और अनिता लाल जी मोहदाल भैया से शोभा वाकवार से शोभा पावली मुझसे और इंदिरा लौतन खातिर गीत चला था जलसा लाल बा सचे के लाली लाल बा आहा

आज के गमाटकों को जलसा लाल बा और अब हो जाए थोड़ा सुन बॉलीवुड गपशप हमने जान ना सके तो लोग धीर मना कुछ सीरियल सा बॉलीवुड फिल्म भी देखे के तो सुनने में आल बा की सब फिल्म रिलीज हुई बहुत जल्द देखो फिल्म के नाम बंदर एक में तू देख बॉबी देओल की ये सपन कॉम्बैक करता है इन द मूवी बंदर फिर डॉन फ्री मूवी आई डॉन फ्री कर में रणवीर सिंह के देखबा और कॉकटेल टू ई बेगो फिल्म है जो बहुत जल्द आई बड़े पर्दे पर है जवानी तो इश्क है हयो फिल्म रिलीज हो बहुत जल्द और मैं वापस आऊँगा ये सब नवा फिल्म बार जो अभी बन के तैयार हुआ था बंदर डॉन फ्री कॉकटेल टू है जवानी तो इश्क है मैं वापस आऊँगा और एगो हिस्टर का फिल्म बना था बॉलीवुड में ओकर टाइटल है रामायण आप तो आज याद रहल रामानंद सागर के गो सीरियल रहल रामायण त ऊपर आधारित फिल्म रही रामायण पर डायरेक्टर हुआ नीतीश तिवारी

तैयारी और एक संगीत तैयार कर ले वानी फिल्म के ए आर रहमान और हंस जिम्बेर और राम के रोल में रणबीर कपूर के दिग्विजय, सीता के रोल में साई पल्लवी, लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे, सरिदी और हनुमान के रोल करियन हमने तो दारा सिंह के दिख रहे हैं हनुमान के रोल का अब दिग्विजय सनी देओल के हनुमान के रोल करल और रावण के रोल में अयन यश तेगो हिस्टोरिकल मूवी रही कहे कि रामायण जो है हमने की धर्म ग्रंथ से जुड़ल बदल दिखा सा फिर वहाँ कौन रंग लाए कहे कि आजकल हिस्टोरिकल फिल्म नहीं बनाता पर रही फिल्म गो एक्सक्लूसिविटी रही देखा सर फिल्मों में कैसे ये लोग काम करिए और देखा सर रणबीर कपूर सच्चे के सखी राम के किरदार निभाए उल्ले पोखरल अरुण गोविल और दीपिका निभाए रहल राम और सीता के रोल तो देखा सर ये फिल्म जब रिलीज हुई तो ये फिल्म कहाँ ली सक्सेसफुल हुई तो हमने प्रार्थना करते सकी जितना फिल्म रिलीज हुई सब सुपरहिट होई अभी कहते चलो गीत सुने वेदिका निहारिका वेदिका निहारिका एगो टीवी सीरियल में आ रहा तो लोग जाने रह सके है ना हा हा तो गीत चलावा दे सर जितना कोई कुछ बॉलीवुड फिल्म देखे के बॉलीवुड के गाना सुने के और भोजपुरी के प्रोग्राम सुने के तर जितना भी फैंस बा मॉरिशस में दुनिया भर में जितना कोई हमारे आवाज़ के पसंद कर रहा है हमारे प्रोग्राम खुशी सुने के गीत तो लोग खातिर संगत या लोग खासम खास विमा हवन सैंपल से कर माँ कर बहन और सब परिवार और हई गीता वेदिका निहारिका चलावत इस दीना जी के नाम साथ में वन प्रतिमा और गुरु जी गंगू भाई रुसाई आपाया विहापेन और जितना हमारा संग डायलॉग बा जो नब्बे अपनी की रात की सुनता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर तू भी गई वेदिका निहारिका वेदिका निहारिका का बोलता चल एक साथ सुने मन कहता नाचे के गावे के कमर वर डुलाई के नाचे हो गावे हो लेट्स नाचो

बाप मंजुलू का क्या दिल घर में अब वेदिका निहारिका का करी मंजुली का चलल बा बाप रे बा भूल भुलैया ओहो कैप्टन के छोट की चिलापिया मार दिलक बोलता आई रे हाई

0: कमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
1: भोजपुरी तड़का।
2: सामदी 6 जून की है रहल बीच पार्टी ब्लू वे में रेडियो मॉरिशस नहीं रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती की रेडियो की ओर से और हमने क्या औजे जुगवा पे रहल औजे परी औजे गिनीशा औजे सुमिता फिर हमने की डायरेक्टर रहल नर्मदा जी विकास कौर साहब और धीर श्रोता लोग आ रहा हमने की ज्वाइन करे वहाँ पर ही ब्लू वे साइड पर बहुत बहुत धन्यवाद चलो कह जा हमने से मिला जा ढेर को के गेम्स में के भाग मिलल और इनाम भी पाइला मदर्स डे स्पेशल के मदर्स डे स्पेशल रहलू कार्यक्रम बीच एंड फन डे पार्टी विद द टीम ऑफ रेडियो मनोरंजन एंड रेडियो मस्ती थैंक्स फॉर कमिंग जितना भी लोग आ रहा बहुत बहुत धन्यवाद जितना श्रोता लोग आ रहा हमने के वहाँ मिले हमने से बात कर ले जा और अच्छा समय भी तेजी सर दिन के 1 बजे से शाम के 4 बजे ले याद बना शाम जी क्या रहा हम तो आ रही चलो के देखे ओए होए क्या बात है ऐसे ही हमने से मिलते रहिए और प्यार खुशियाँ बांटते रहिए और ये बक्का चारों ओर घोर अंधेरा छह लग बार जानी ना सर पर डरने की बात नहीं बार हमने तो लोग के साथ है सर अब सुनबर कोनो चीज बाहरा में घर के बाहर की कौन चीज गिरा था कि कौन चीज ध्यान नहीं दिया भैया अपनी है सर तो लोग के साथ हम हैं तो क्या गम है और बेशक ढेर कोई अभी सोचा था कि लोग अकेले हों सा कि लोग की दुनिया में कोई नहीं बा कोई के दिल टूटल बा कोई कोई के दिल तोड़ दे लगता ये सब होते रह रहा भैया अब देखा कोई के नहीं सक बदले अब अगर वो इंसान थोड़ा कोनो खरा खोटा सुना दिला थोड़ा दिल दुखा गल माफ कर दिया हो कि काजे नहीं कैसे बतवा बोल ले हो पर तू दुनिया में अकेला नहीं हुआ ढेर कुछ अकेला अकेला रहेलन से नहीं भगवान तो लोग के साथ बा हमनी तो लोग के साथ थे सा और हमेशा साथ रह जा कोनो भी प्रॉब्लम हो तो बेशक हमनी सब बात करे अगर प्रॉब्लम नहीं इसका सॉल्व करे तो कम से कम एगो प्रॉब्लम रहेगा तब छा बचाई कि जब दिल में बटवा रख बर तो थोड़ा बिथरे बिथरे खाई लगी तब जाके प्रॉब्लम हो जाला तो अगर कोई थोड़ा दिल तोड़ लग बा कोई बात नहीं ऐसे होला जो कि सबसे ज़्यादा हमने प्यार करे रहा सब ही हमने कि दिल तोड़े रहा ये दुनिया के दस्तूर है तो तू फिक्र ना करे तू अकेले नहीं हुआ है हमने तो लोग के साथ है सर तू बहादुर हुआ और करेजियस इंसान हुआ हमने तो लोग के साथ है सर अगर अकेला हुआ तो अपना अकेलापन के दूर करिए हमने के संगे हमने की भोजपुरी गीतों के संगे रात के 11 बजे अगला गीत है कमरिया कमर व डोला गीत गए वह आशीष रामफल बहुत प्यार से और गीत चरावती स्वीति और स्वीनी खातिर फिर भी ऑस्ट्रेलिया से हवन अजय और पूनम चिंताराम को डुगवेता बाल गोपाल मॉरिशस नौकर माता जी इंदिरा चिंताराम और है गीतवा आरंभ जी के नाम जन

स्विट्जरलैंड तवन संजय हरिचंद गीत तोहरों खरती तोहर पत्नी संध्या तोहर बेटी हुविष्का और सर्ब हरिचंद परिवार के नाम चले गीत सुने कमरिया

आगे के जमाना में सिंपल खाना सब कोई खाता है पर सब कोई तंदुरुस्त रहल खुश रहलंसा आजकल जितना सुविधा बा फिर भी इंसान खुश नहीं बा सब कोई तनावग्रस्त बा सब कोई की देखभाल था स्ट्रेस में होन सा इधर भागो उधर भागो भागदौर बाप रे बाप भागम भाग फजर के उठ के बुनेरे उठा चार रोटियां ने चा बनावा लड़का लोग के पारी करा लेकुल जाए के लड़का लोग जाके लेकुल छोड़ा फिर तैयार हुआ काम पे जा काम पे से वापस एक बार तब घर के काम थोड़ा तान करता बर्तन मांजा लुगा धोवा लड़का लोग के देखा बाप रे बाप इतना स्ट्रेस ये खाते ढेर कोई नौकर चाकर रखेला खाए कि नौकर चाकर रख बर तोहर कमो आराम से हो जाए अब सब कमो तू ही कर बत कैसे हो बोले था ढेर घर में पति महोदय रो काम से आवे तो खड़ी सुनाल के बैठ जालन सर टीवी के आगे और पत्नी के परी सब काम करके दे इसे दुनिया ना करिया हो पति पत्नी शादी कर साथ फेरा ले ले हुआ सर और साथ फेरा में क्या बोले रहला सर कि वादा कर बस साथ साथ नहीं भय तो जब पत्नी शांत के आल बर्तन धोवा था तो तुझे वह बर्तन पहुँच के रख दे यार को थकारी काट दे पत्नी के हाथ बताए पर आजकल के जिनिस लोग नौजवान लोग शादी करने

तो सुशीलम से कि पत्नी के जहाँ सब करेगी नहीं पति पति दोनों के जहाँ हार बटाएगी ठीक बा कौन और दाल पकाई दी हम आगे के जनरली ना साधारण खाना से दाल पका दी बा भात पका रहा दाल पका दे रहा मच्छी उच्छी तार दे रहा तो सब कोई बैठ के खा लिया भीतर जन जन प्रकार के खाना बा बाप रे बाप फिर भी अब घर में चार जना बा पति खुज रहा दूसर खाए के पत्नी दूसर खाए के लड़का दूसर खाए के अब पत्नी चार जना के कैसे जीवेगा खाना बनाई हम तो बोलब सिंपल खाना बना दिया दाल पका दिया और कोनो चीज तार दिया भात ही रोटी तब प्यार से खा ली बा दाल पकाई दी अनिल सिंह रमेश्वर और मनहिल अमृता की दुआ गई दी है वरना और ये चलाती सब कुछ कर दी जिन कुछ रहेला सिंपल खाना खाई के हाँ सिंपलिसिटी इज द बेस्ट हाँ कि नहीं और तो फार्चिकों के काम से अब दाल पका दिला या आलू उतार दिला तब सुन भाजी भून दिला पीमा के अचार सुपेर तो आज की तो चलाओ तो इसे खास हम खास विजिता के नाम विजिता के सकल पति और कद्दू को बेटा खातिर और की चलाओ तो इसे हमने तेजस खातिर तेजस की ओर से सब संगत यालो के नाम तेजस सोन मेबर्ग से और है कि तो हमने चला रहा थी इस विद्या की ओर से अगर बेस्ट फ्रेंड अनुराधा के नाम और सैंपल से हवन विदुषी विदुषी की ओर से अकर मंगित राजेश के नाम और लोग गीत पसंद बा दाल पकाई दी तो चलो गीत सुन और तू भी मौका मिली तो दाल पकैया है बोलिए हम क्या क्या माँ बाप दाल पूरी खाई दाल और पूरी है पूरी तारल और दाल क्या बात है रुकर में पीमा के अचार

आपको कि रात की ढेर कुछ की नींद नहीं लग रहा, कोई इधर करवट बदलता, कोई उधर करवट बदलता, तो अब जो हाँ करवट बदल छोड़ दा है कि तो सुनिए गुजोली की चटनी कैसे बनी, कैसे बनी फुलरे बिना चटनी, कैसे बिना चटनी की बात बोलते सत्ता। मॉरिशस में ढेर कोई हर प्रकार के चटनी बनाए वाला, पुल डामन के चटनी, कोको के चटनी, पीमा के चटनी, पिपंगाई के लापों के चटनी, आलू के चटनी, कोतमिली की चटनी, लामोत की चटनी, आ हा हा चटनी जो है एकदम चटकार रहेगा। और जब थोड़ा लाफिए लगी तो दाल भात रही और तरसुन चटनी खा ली बर्मू बन जाए, हाँ कि नहीं। खासकर एक कोको की चटनी, कोको की चटनी में लामोत के पत्ता डाल दी बीमामा डाल दी तो एकदम स्वादिष्ट बन जाला। तो जितना कोई कुछ चटनी खाई के गीत है थलो खातिर और चाची भामा हमने के साथ होता है, भामा चाची नमस्ते, चाची राधा हवन मोहतबा से वो भी एकदम बढ़िया पकावेलन, फिर चाची चंपा हवन, चाची देविका, चाची देविका राम गतिया एकदम जोड़ी से चटनी बनावे की का बोलबा, आ हा हा हा। तो चाची चंपा, चाची देविका राम गतिया, चाची राधा शिवालर का गीत तो लोग खतीर, कैसे बनी कैसे बनी फुल रे बिना चटनी, कैसे बनी

सीधा धनाजी नावजी गावल गीत अगल में लोकनी बैठल बा और जानदा से कि हर बरिस जून जुलाई में सेकंड टर्म के मॉक एग्जाम्स होला जैसे कि ग्रेड 9 ग्रेड 11 और ग्रेड 13 के लेकर लोग मॉक एग्जाम्स में भाग लिए सर तो लेकर लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करिए रिविजन करिए ताकि मॉक एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो क्या कि साल के अंत में तो लोग बड़का एग्जाम ही कर बस और अभी आजकल छोटा मोटा टेस्ट चला था छोटा क्लास वन की तरीका लोग की मांग कर पढ़िए लिखिए बड़ा आदमी बनिए और माँ बाप और देश के नाम रोशन करिए अपन अध्यापक अपन कॉलेज के नाम और रोशन करिए और आजकल पढ़ाई लिखाई की सब सुविधा बा इंटरनेट पर जे बत हर सब प्रकार के नोट्स बा वो चाहे जेमिनी हो गूगल हो चैट जीपीटी हो तो ये सब पर थोड़ा नोट्स लड़ खास कर हमने कि जो इंटरनेट पर तो ढेर मना सुविधा बा और लाइब्रेरी में तो हर प्रकार के पुस्तक बा और ज़रूर ये सब के थ्रू इस्तेमाल करिए ताकि अपन एग्ज़ाम अच्छी तरह से पास हो बा और हाँ एग्जाम में गोगी नहीं करिए नकल नहीं करिए सबको अपन अपन पापी में काम करिए गोगी कर बट डिसक्वालीफाई हो जाइबा जाने रहा कि नहीं सबको जाने रहा तभी चल रही गीता सुन जब कुणाल हीरलाल गेर है वह नच दे सब अध्यापक और स्टूडेंट्स दोस्तों खातिर अभी ढेर लेकर लोग रात के विजय कराता साथ में अपन एयरफोन डाल के अपनी के सुना था वन सा और ढेर कोई अपन मोबाइल फोन पर सुना था देखो टीएनटी पर ढेर कोई राजो पर ढेर कोई लैपटॉप पर तो जो भी जरिया से तो लोग हमी के सुना था और हमने की आवाज़ के अपन घर में स्वागत करा था गीत तो लोग के नाम कुणाल हीरलाल गेर है वह नच दे है गीत चरावती से खास निशान सिंह चुबाक के नाम आप रहलन थोबचिक कर पत्नी कर बेटी दामाद और उमा जगनायक टूरिस का ये रहलन कर बेटी दृष्टि दामाद बहादुर और सब बहादुर परिवार के नाम नच दे

बारात में लोग हमेशा हमने के प्रोत्साहित कर अच्छा काम करे के और हमियों के भी कर्तव्य लड़का लोग के सिखाए के नौजवानों के सिखाए के कि हमेशा अच्छा काम करिया। हाँ, और अच्छा काम कर बता अच्छा फल मिलेगा। कोई की दिल नहीं दुखाए के, कोई की निरादर नहीं करे के, कोई की डिसरेस्पेक्ट नहीं करे के, सब के समान रूप से प्यार मोहब्बत दे के प्यार खुशी मौती रहेगी। और जब जब कोई की रानी वैसे में तो दिल से बधाई दिया, शादी में गलवा फ्योंसाए में गलवा तब बधाई दिया, बोलिए बधाई हो बधाई कंग्रेचुलेशन। और जैसे कोई के ड्राइविंग लाइसेंस है तब बोले ओ इट्स आई एम सो हैप्पी फॉर यू है कंग्रेचुलेशन कि तो ड्राइविंग लाइसेंस मिल गए। जब कोई की शादी हो रहा तब बधाई, फिर जब मंगनी होला तब भी फिर भी बधाई, शादी की सालगिरह ओकर में भी बधाई, बधाई हो बधाई। और खासकर कोनो भी खास मौका रहेगा तो चेहरा बोले कि बधाई हो बधाई। तो जैसा कोई की शादी की सालगिरह आज, और जैसा कोई की शादी हो बा आज, या जैसा कोई की जन्मदिन हो बा आज, या कोई खास मौका वो खास इंसान आल बा आजकल तोहर लगे तगे तो लोग खातिर बधाई हो बधाई। ललिता गजाधर की तो गैली हवन और की तो सीमा और सूरज खतेर और साथ में महाराणा प्रताप लीन थो बिर्श के सब हरकु परिवार के नाम, सबका कथिया परिवार के नाम जोन थियोले रहरन और सब चिराखन परिवार के लिए जोन थियोले हवन जा। और हमने के साथ देवत हवन बहुत बहुत प्यार के साथ। और जितना कोई बोला था कि आज हमारे जन्मदिन में कोई हंक नहीं बोला हैप्पी बर्थडे तो हम नहीं बोला था, इधर तुम लोग के हैप्पी बर्थडे ढेर मारा प्यार जुग जुग जियो और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बधाई हो बधाई।

हई तक संगे भोजपुरी तरह का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त होता है। कुछ ही सेकंड्स में कुछ ही मिनट में रात के 11 बज जाए थे। 11 बजे सुन बजा अगला प्रोग्राम सुनहरे

पर और रात के 12 बजे से कल फजर के 6 बजे सुन बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने हमने की तरह की मुलाकात यहीं तक लग हमने की तरह की मुलाकात हुई कल लेंदी की रात के 9 बजे से 11 बजे इसी चैनल पर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और कल हमने टिकटॉक पेज पर भी नजर आवा जाता हमने की सक बजा का रात के देखे 9 बजे से 11 बजे रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर और सक बजा सुने रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर रात के 9 से 11 बजे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में तक रात तक हमने की इजाजत दे हमने के सुनना जा हमने के एसएमएस कर जा फोन कर जा बहुत बहुत धन्यवाद हमने की आवाज़ के अपन घर में स्वागत कर ला जा शुक्रिया करम मेहरबानी तक रात तक लेंदी के रात तक हमने की इजाज़त दर और जय प्रताप सिंह सितालू की ओर से सबको की प्यार भरी नमस्ते सलाम लव यू गॉड ब्लेस नमस्ते बाय शुभ रात्रि।

ए दादा कहाँ जाल बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेस बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए समस्त श्रोताओं को नीतू

चर्चा का करजोड़ प्रणाम। एक बार फिर रेडियो मॉरिशस पर आप सभी का हार्दिक अभिवादन, स्वागत है श्रोताओं। आइए आज हम आपको एक ऐसे कलाकार की दुनिया में ले जा रहे हैं। वैसे जब दुनिया की बात चल रही है तो हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी के दम पर एक अलग पहचान बनाई है। उन्हीं में से एक थे जीवन, याद आया कितने विलेनस रोल्स उन्होंने निभाए थे, उनके बारे में आज हम और जानेंगे। साथ निभाते रहिएगा।

जीवन, उनका असली नाम ओमकार नाथ धर था। उनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में फिल्मों के प्रति गहरा लगाव था। सपनों को पूरा करने के लिए वे मुंबई आ गए और संघर्ष के कठिन दौर से गुजरते हुए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई।

जीवन ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत छोटी छोटी भूमिकाओं से की, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रतिभा को पहचान मिलने लगी। उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक यानी कि विलेन के रूप में ऐसे यादगार किरदार निभाए कि दर्शक उन्हें देखते ही पहचान

जाते थे उनकी तीखी नजरें उनका अनोखा अंदाज और प्रभावशाली डायलॉग डिलीवरी उन्हें अन्य कलाकारों से अलग बनाती थी उनका विलेन रोल कभी सिर्फ डराता नहीं था बल्कि अपनी अदाकारी से कहानी में जान भी डाल देता था।

जीवन की सबसे खास बात ये थी कि वे सिर्फ विलेन तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने धार्मिक फिल्मों में नारद मुनि का किरदार इतनी बार और इतनी खूबसूरती से भी निभाया कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी नारद मुनि के रूप में याद करने लगे। उनकी मुस्कान, उनकी वाणी, उनका व्यक्तित्व नारद मुनि के चरित्र के साथ इतना घुल मिल गया था कि वे इस भूमिका के पर्याय बन गए। आज भी जब पुरानी धार्मिक फिल्मों की बात होती है तो जीवन का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है।

वैसे अपने लंबे करियर में जीवन ने सौ फिल्मों में काम किया और हर किरदार को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया। वे उन कलाकारों में से थे जो किसी भी भूमिका को अपनी अदाकारी से यादगार बना देते थे, चाहे निगेटिव रोल हो, कैरेक्टर रोल हो या धार्मिक किरदार। जीवन हर जगह अपनी अलग छाप छोड़ने में सफल रहे।

श्रोताओं, अभी जो जो गाने आप सुन रहे हैं इन फिल्मों में जीवन नजर आए। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी छवि एक अनुशासित, विनम्र और समर्पित कलाकार की थी। उनके साथ काम करने वाले कलाकार उनके प्रोफेशनलिज्म और सरल स्वभाव की बहुत प्रशंसा करते थे। उन्होंने उस दौर के कई बड़े सितारों के साथ काम किया और अपनी प्रतिभा के बल पर दर्शकों का प्यार भी जीता।

18 जून 1987 को जीवन इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी फिल्में और उनके किरदार आज भी जिंदा हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को जो योगदान दिया उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। विलेन के रूप में उनका प्रभाव, नारद मुनि के रूप में उनकी लोकप्रियता और एक कलाकार के रूप में उनकी समर्पण भावना उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाती है।

हमें ये सिखा गए कि सफलता सिर्फ मुख्य नायक यानी कि मेन हीरो लीड हीरो बनने में नहीं बल्कि हर किरदार को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निभाने में कलाकारों में शामिल है। उनका नाम हिंदी सिनेमा के उन अमर कलाकारों में शामिल है जिनकी कला और विरासत आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। उनकी याद और उनकी अदाकारी सदा अमर रहेगी। प्रणाम, शुभ रात्रि।